0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि सभी को, मेरा नमस्कार। मॉरिशस की बड़ी कंपनियों में रोजगार कुल मिलाकर स्थिर बना हुआ है। मार्च 2026 में लगभग 310 हजार कर्मचारी कार्यरत थे। इसी बीच पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से सामने आने वाले प्रमुख निष्कर्ष है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय यह विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल भंग कर दिया गया। खराब प्रबंधन और असहनीय हो चुकी निष्क्रियता से नाराज मंत्री माइकल सिक्यूएन ने बोर्ड के सदस्यों को एक एक करके बुलाया और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी। मामला ये है कि एसटीसी खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में विविधता लाने में असफल रहा है, जिससे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। ये एक ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे मंत्री ने दिसंबर से ही जनता के सामने व्यक्तिगत रूप से लिया था। मॉरिशस का शैक्षिक और सांस्कृतिक जगत में अपनी सबसे प्रतिष्ठित महानुभावों में से एक प्रसिद्ध मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर विनेश हुकुम सिंह को सबसे बढ़कर मॉरिशस क्रियोल भाषा की पहचान और उसके महत्व को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने के रूप में याद किया जाता है। आज ये हस्ती हमारे बीच नहीं रहे। 1970 के दशक से ही ऐसे समय में जब मातृभाषा को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था और इसके प्रति कई पूर्वाग्रह मौजूद थे, विनेश हुकुम सिंह ने अपने जीवन को मॉरिशस की भाषाई विरासत की वैज्ञानिक नींव तैयार करने के लिए समर्पित कर दिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, यानी हर 5 में से एक से अधिक मॉरिशस वासी इस आयु वर्ग में आते हैं। और अब मौसम का हाल।
2: RM3 रेडियो

सदकल्लाहु अज़ीम। मस्जिद सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की। कुरान की तालीमात इंसान को बुराई, जुल्म, झूठ और गुनाहों से दूर रहने की नसीहत करती है। कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने और उस पर अमल करने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। कुरान की तिलावत से अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का एहसास पैदा होता है और ईमान ताज़ा होता है। सामीन कराम, पेश खिदमत है एक हमद। आई

श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी नामस्मरण तो सागिन ई प्रत्येक तोली रागालु मी अंदर हृदयालो भक्ति भावानी निंपिंदनी आशिस्तुन्नाम इंतटितोने पूर्ति अवुतोंदी नेटि प्रसारम आशिस्तुन्नाम मीकु चाला बागा मेच्चिंदी इक मी वर्षकु सेलवु इव्वाली नमस्कारमुलु शुभदिनम।

शक्ति। नमस्कार, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धारा भक्ति की जब बहती है तो सुख और शांति का आभास अपने आप ही होने लगता है। आइए चंद भजनों के माध्यम से हम भी इस सुख और इस शांति का आभास करें। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में गणपति जी से प्रार्थना करें कि वे हर लें सारे संकट इस विश्व के लोगों के और सबको संतुष्टि प्रदान करें।

गोवर्धन पर्वत उठाकर रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को गोविंदा कहकर पुकारते हैं भक्त। कृष्ण की महिमा तो अपार है, संसार की रक्षा करने का कोई भी अवसर कान्हा ने नहीं गंवाया। जय जय गोविंदा।

बस आदि शक्ति जग जननी माँ के आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रहे, यही कामना हम भक्तों की रहती है। न कोई पीड़ा हमें सताएगी, न कोई कष्ट हमें हराएगा। आइए करें जय जयकार करुणामयी जग जननी की।

सूर्य देव को जो पूजता है उसके अंदर ऊर्जा का संचार रहता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश चहुं ओर दिखता है।

दयालु हैं शिवजी, कृपालु कहलाते हैं शंभुनाथ। भक्त तो स्वयं को शिवजी का दास मानता है, पर भोलेनाथ अपने हर भक्त को अति उत्तम स्थान प्रदान करते हैं। हर भक्त शिवजी का लाडला कहलाता है।

0: ज्ञान और गुण के सागर कहलाने वाले बजरंग बली के गुणगान का एक माध्यम हनुमान चालीसा का गायन है। तो चलिए मिलकर गाएं हम महिमा हनुमान जी की।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

प्रभु के चरण में आकर जय जयकार करें हम प्रभु की। इससे बड़ा सुखमय पल कौन सा हो सकता है भला। प्रभु की महिमा हम आइए प्रभु आरती में गाएं। इसी आरती के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को हम विराम देंगे, परंतु भक्ति की धारा का सुख हम प्राप्त करते रहेंगे। प्रभु की जय हो।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से पूजा आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी को मेरा नमस्कार समाचारों में आप सभी का स्वागत है पीढ़ियों के बीच एकजुटता आज मनाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस का यही विषय है इस अवसर पर फिनिक्स स्थित जेएनजे ऑडिटोरियम में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ युवा भी शामिल हो रहे हैं सामाजिक एकीकरण मंत्री अशोक सुब्रो ने उपनिवेशवाद विरोधी और उत्तर औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान हमारे बुजुर्गों के योगदान और संघर्ष को रेखांकित किया मंत्री अशोक सुब्रो ने युवा पीढ़ी तक मूल्यों को पहुंचाने के महत्व पर भी जोर दिया स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय विवादों की केंद्र में है इसके निदेशक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कल बर्खास्त कर दिया गया एक ऐसी व्यवस्था जिसे वे नाकाम मानते हैं और ऐसी निष्क्रियता से परेशान जो अब असहनीय हो गई है मंत्री माइकल सिक्यूएन ने परिषद के सदस्यों को एक एक करके बुलाया और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की जानकारी दी और इसके साथ ही राशन चावल का गंभीर मुद्दा भी जुड़ा हुआ है जिसकी बार बार होने वाली कमी से परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नए बोर्ड को कल मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा कल पुलिस और प्रवीण जगनाथ के बीच जारी किए गए बयानों के माध्यम से एक वास्तविक टकराव देखने को मिला लाइन बराक्स ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री के रुख का जवाब दिया जिसमें उन्होंने सीसीआईडी में अपनी पूछताछ के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था जांचकर्ताओं का कहना है कि स्थिति इसके विपरीत है मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और सबूत प्रवीण जगनाथ को क्रमशः उपलब्ध कराए जा रहे हैं पुलिस ने बहस को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि किसी संदिग्ध से पूछताछ करने से पहले उनके खिलाफ उचित संदेह जुटाना जरूरी है लेकिन पुलिस पर ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो पहले से ही संदिग्ध को उन संदेहों के सही होने के बारे में आश्वस्त करे लेकिन एमएसएम के नेता की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी है देर शाम जारी एक बयान में प्रवीण जगनाथ ने सीधे तौर पर अधिकारियों के रुख का विरोध किया मॉरिशस की एकेडमिक और सांस्कृतिक दुनिया ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित महानुभावों में से एक को खो दिया है विनेश हुकुम सिंह मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर थे और सबसे बढ़कर वे मॉरिशस क्रियोल भाषा को मान्यता दिलाने और उसके महत्व को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों के अग्रदूत के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे विदेश में नेपाल में भूस्खलन और भारी बारिश की एक और लहर के कारण लगभग 30 लोगों की जाने गई है वहां पर अभी अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ से उबर भी नहीं पाया है जिसमें 1400 लोगों की जाने चली गई थी और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार रॉय रोड न्यू ग्रोव में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड शिहिरानंद गंगा जिन्हें लोग अनिल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनके बेटे यश गंगा के मकान रॉय रोड न्यू ग्रोव से उठाकर घोबियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टू डेट 3 PM कैंस काउंटों वाकुआ में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड श्री केदारनाथ रामप्रोगस जिन्हें लोग विजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी

0: आज दिन के ढाई बजे, आज दिन के ढाई बजे ला शापेल मोरा पेटिट रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतु का टुबोन कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

RM3 रेडियो मनोरंजन पर लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सुहाना सफर और मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर सुपहर के 3 बजे तक सजाए रखेंगे आपके इस खूबसूरत कारवां को कुछ ऐसे गीतों के साथ जिन्हें आप सुनकर उन पुराने दिनों को याद कर सकते हैं 3 घंटों का ये सफर होगा उन गानों के नाम जिनके लिए किसी स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं होती बस पहली धुन बजती है और यादें खुद ब खुद सामने आ जाती है आज का सफर है मेलोडीज और लफ्जों के नाम और ऑफ कोर्स इन खूबसूरत गीतों के नाम जिन्हें बस महसूस किया जाता है आप इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 पर रहेगा आपका इंतजार परी का साथ रहेगा सुपहर के 3 बजे तक और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके इस सफर को हम स्पेशल बना रहे हैं अजनबी फिल्म का ये गाना लेकर आए हैं हमारे तमाम दोस्तों के नाम आप अजनबी तो नहीं हमारे खास दोस्त हैं तो इस सफर को स्पेशल बनाने के लिए आपका साथ भी जरूरी है थोड़ी ही देर में एक गेम खेलेंगे जहां पर आप एक शानदार इनाम जीत पाएंगे तो कहीं मत जाइए हमारे साथ जुड़े रहें इन गानों को एंजॉय करें ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

और चलिए दोस्तों 12:15 हो रहे हैं और यहाँ पर किरण पुरी, जीजी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी और काला राम काहिगार हमारा साथ दे रहे हैं वैनकुवर कनाडा से। और बस आप साथ हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हमारे जो लिसनर्स हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आपका साथ, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास। थैंक यू सो मच। सात समंदर पार होने के बावजूद आपने चुना RM3 रेडियो मनोरंजन को, तो आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। अगला गाना आपके नाम साथ ही, यहाँ पर माधुरी और परी हमारा साथ दे रही हैं, तो चलिए चल पड़ा ये गाना आपके लिए। सभी हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर की आवाज़ें, 1974 की फिल्म अनाड़ी, उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620000, नॉर्मल मैसेजेस या व्हाट्सएप, दोनों के जरिए आप हमें अपने प्यार भरे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। नंबर हमारा वही है 5250620000, 5250620000।

और चलिए दोस्तों हमारा ये जो कारवां है सुहाना सफर जहां पर हम पुराने गाने आपके लिए लेकर आते हैं तो अगला गाना है फिल्म बड़े दिल वाला से लिया हुआ इस फिल्म में ऋषि कपूर नजर आए थे और यहां पर एक सवाल लेकर आए हैं जहां पर आप हमारे साथ खेलें और एक शानदार इनाम आप अपने नाम कर सकते हैं तो आपको हमें बताना है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर के ऑपोजिट कौन सी खूबसूरत अभिनेत्री यानी

की एक्ट्रेस नजर आई थी। बात हो रही है फिल्म बड़े दिल वाला की और जिस फिल्म में नजर आए थे ऋषि कपूर और उनके साथ नजर आई थी एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस। आपको हमें उस एक्ट्रेस का नाम बताना है। आपके सही जवाबों का इंतजार 5250620 पर 5250620 मैसेजेस के जरिए आप हम तक अपने सही जवाब पहुंचाएं। और आपको बता दें कि अगर आप हमें सही जवाब देते हैं आप बनते हैं अगर हमारे लकी विनर, तो आप हिस्सा बन सकते हैं द बॉलीवुड मैजिकल 90s कॉन्सर्ट का जो होने वाला है इस शनिवार 3 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से एट MGI ऑडिटोरियम मोका, जहां पर आप सुन पाएंगे शानदार परफॉर्मेंसेज ऑफ विनय रामदू जो है लीड सिंगर। उसके बाद होंगी बिंदिया हीराधन, नितुषा राम प्रोग्रेस, विराशा पिटिया, कृष्णा पोइनन, साथ में है अक्षय जूरन, नाविशा और हर्षिता हामदू। इन सभी के परफॉर्मेंसेज को आप सुन पाएंगे अकम्पनीड बाय फुल लाइव बैंड, म्यूजिशियंस और कोरस की टीम भी साथ होने वाली है। कॉन्सर्ट आपको लेकर चलेगा 90s के नॉस्टैल्जिक ब्यूटिफुल दौर में, जहां पर आप सुन पाएंगे मोस्ट मेमोरेबल बॉलीवुड हिट्स ऑफ द 90s परफॉर्म्ड लाइव ऑन स्टेज। ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मेलेडी बीट्स प्रोडक्शन और जो हमारे विनर है उनको मिलने वाली है एक ई टिकट जो व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दी जाएगी। सो सिंपल सा सवाल, बात हो रही है फिल्म बड़े दिल वाला की। ऋषि कपूर तो नजर आए थे इस फिल्म में और उनके ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आई थी? जल्दी जल्दी से आपके सही जवाब 5250620 5250620 पर अपने मैसेजेस के जरिए। और जब आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं आपका पूरा नाम हम तक जरूर पहुंचाएं और ये जो ई टिकट है आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दी जाएगी। चलिए सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके सही जवाबों का इंतजार 5250620 पर।

और चलिए यहां पर हमने आपसे पूछा था एक सवाल, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े दिल वाला ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, इसमें ऋषि कपूर के ऑपोजिट कौन सी खूबसूरत अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस नजर आई थी? और सही जवाब है टीना मुनीम, द वन एंड ओनली टीना मुनीम। और ये तो हम जानते हैं कि 70s के दौर में, 70s के दशक में ऋषि कपूर और टीना मुनीम की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। और चलिए यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, और लकी ड्रॉ के बाद जो नाम सामने आया है, आप है वीना गंगाधर, आप है नोएल फ्रांस से, सो कंग्रेचुलेशंस वीना जी, आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब और आप तक पहुँचा दी जाएगी ये ई टिकट आपके व्हाट्सएप के जरिए, सो कंग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको। सो आपने जीता है एक कॉन्सर्ट जो है द बॉलीवुड मैजिकल 90s, शनिवार, जी हाँ, इस शनिवार 3 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से एट MGI ऑडिटोरियम मोका, और जहां पर आप देख पाएंगे कुछ शानदार हमारे लोकल सिंगर्स, विनय रामदू जो है लीड सिंगर, और उसके बाद कुछ और परफॉर्मेंसेज होने वाली है, बिंदिया हीराधन है, नितुषा राम प्रोग्रेस, विराशा पिटिया, कृष्णा पोइनन, वी ऑल्सो हैव अक्षय जुरन, नविशा है, हर्षिता रामदू, और एक फुल लाइव बैंड म्यूजिशियंस और कोरस टीम के साथ अकंपनी किया जाएगा। और ये जो कॉन्सर्ट है ऑडियंस को लेकर जाएगा नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल जर्नी, जहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे बॉलीवुड हिट्स ऑफ द 90s परफॉर्म्ड लाइव ऑन स्टेज। ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मेलेडी बीट्स प्रोडक्शन, और आपने यानी कि हमारी वीना गंगाधर नोएल फ्रांस से आपने जीती है एक ई टिकट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये कारवां हम जारी रखते हैं, सुहाना सफर प्रोग्राम, मैं हूँ परी आपके साथ, खूबसूरत गीत लेकर आए हैं आपके लिए, लेकर जा रहे हैं आपको डाउन मेमोरी लेन, उन खूबसूरत यादों को ताज़ा कर रहे हैं हम हमारे इस प्रोग्राम के साथ, साथ है आपका भी, तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक यानी कि मुझ तक पहुंचा सकते हैं 5250620005250620 पर हो रहा है आपका इंतज़ार।

और जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम सुहाना सफर। मैं हूँ परी आपके साथ अभी से लेकर सुपहर के 3 बजे तक। इन खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल को हम बहलाए रखेंगे। पुराने गीतों की एक खास बात यही है कि उनमें सिंपलिसिटी थी, लेकिन वो सिंपलिसिटी कभी ऑर्डिनरी यानी कभी सादी नहीं लगती थी। एक सीधी सी धुन, खूबसूरत लिरिक्स और आवाज में इतनी मिठास कि सालों बाद भी वो गाना उतना ही ताजा लगे। कुछ मेलोडीज वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो वक्त के और भी अपने अंदर संभाल लेती है। इसी खूबसूरत मेलोडी को लेकर चलते हैं हम अगले गीत की तरफ, और आपका साथ तो बना हुआ है, तो

चलिए हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आप भी पसंद कर रहे हैं. RM3 रेडियो मनोरंजन, अभी के लिए लता जी की आवाज, द मैजिकल वॉइस ऑफ लता मंगेशकर जो गूंज रहा है ऑन रेडियो मनोरंजन. साथ देने के लिए शुक्रिया. एंजॉय दिस वन.

0: प्यार है,
1: अरे पापा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: एंड वेल पुराने गानों का कारवां यहां पर आपके लिए हमने सजाया है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं पाई से नंदा जी। कहती है गाना हो जाए चार लड़कों के नाम, उनकी बहुओं के नाम, सभी बच्चों के लिए और सभी पुनिता और गणेश परिवार के नाम। तो चलिए दोस्तों, फरी का साथ है सुपहर के 3 बजे तक सुहाना सफर, ये प्रोग्राम स्पेशली आपके नाम। नसीब फिल्म का ये गाना लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कहते हैं ना दोस्तों कि नसीब से ऊपर और नसीब से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी के लिए तो

शायद ये प्यारे गाने आपके और हमारे नसीब में हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे रेडियो मनोरंजन के जरिए तो साथ देने के लिए शुक्रिया एंजॉय दिस वन हमारे सभी लिसनर्स के नाम

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए यहाँ पर मनीता जी फ्रांस से हमारा साथ दे रही हैं आप और ये जो खूबसूरत सा गाना है इसे आप डेडिकेट कर रही हैं सभी परिवार के नाम जो सेंट जूलिया विलाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं माँ सुमंती है बहनें हैं आरती सचिता बबिता रेखा भाई सत्यम भाभी उषा और ख़ास तौर पर हमारे सभी जो रेडियो मनोरंजन लिसनर्स हैं उनके नाम तो बहुत बहुत धन्यवाद सात समंदर पार होने के बावजूद यू आर कनेक्टेड हमारे साथ सो ये जो स्वीट सा गाना है हम डेडिकेट कर रहे हैं आपकी स्वीट फैमिली के और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर परी का साथ सुहाना सफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप समाचार रजनी से। रजनी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित JNJ सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया। इस तरह मंत्री अशोक सुभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वेलफेयर स्टेट को मजबूत करने के सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नवो मागी ने ये बात दोहराई कि सरकार बुजुर्ग लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए कार्यरत है और कटिबद्ध है। इस तरह कई सुधारों और ठोस कदमों के जरिए ऐसा किया जा रहा है। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट के बारे में भी चर्चा की गई और कहा गया कि इसमें तरक्की हो रही है। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल विदेश के औपचारिक मिशन पर हैं। वे टुवालू, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के आमंत्रण किए जाने के बाद टुवालू और फिजी में आयोजित पूर्व COP21 बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति अगले 9 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में रॉबर्ट हंगले अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। कल रात MBC न्यूज के रेडियो विभाग को दिए गए एक बयान में व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्योन ने SDC की प्रशासनिक परिषद के रद्द किए जाने का इरादा व्यक्त किया। इसी शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सामने इस पर चर्चा की जाएगी। मंत्री के अनुसार वे SDC की जिम्मेदारी में कुछ पदार्थों के स्टॉक से संतुष्ट नहीं है। मॉरिशस विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महानुभाव का निधन। विनेश हुकुम सिंह चलबसे, वे मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफ वाइस चांसलर थे और एक प्रसिद्ध भाषाविद भी। क्रेओल मॉरिशस के हक में उन्होंने अहम कार्य किए। वे मातृभाषा को काफ़ी अहमियत देते थे और कई वर्षों तक वे हमारी भाषाई विरासत की नींव रखने में बिता रहे थे, कार्य कर रहे थे। विदेशी समाचारों में कल दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले पायलट, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने मच्छार को एक बड़ी घटना को टालने का भी श्रेय दिया। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मच्छार घायल हालत में जमीन पर पड़े रहे। उन्होंने अपनी बची कुची ताकत से कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद मच्छार को घायल हालत में देखकर प्लेन में मौजूद दूसरे यात्री और क्रू मेंबर ने को पायलट पर काबू पाया और प्लेन में मौजूद दो पायलटों ने प्लेन को सऊदी अरब के तबुक में सफलतापूर्वक उतारा। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। रॉयल रोड न्यूग्रोव में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की श्री हीरानंद गंगा जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके बेटे श्री यश गंगा के घर रॉयल रोड न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोबियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: On MBC Play and MBC.mu.
3: You're listening to RM3 Radio Mana.

और जी हाँ दोस्तों, सुहाना सफर हमारा ये प्रोग्राम अभी भी जारी है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अक्टूबर महीने का पहला दिन यानी कि इट्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, थर्सडे का दिन, और आपका हम स्वागत कर रहे हैं इस आवर में। 1:08 हो चुके हैं, मैं हूँ फरी आपके साथ। सुपहर के 3 तक ऐसा खूबसूरत कारवां को आपके लिए हम सजाए रखेंगे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सुहाना सफ़र गोल्डन एरा के खूबसूरत गानों को हम याद करते हैं, और जब उस एरा को याद करते हैं सो हाउ कैन वी नॉट मेंशन द प्लेबैक सिंगर्स। लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश दा, मन्ना दे, हेमंत कुमार एंड मेनी मोर वंडरफुल वॉइसेस। येसुदास की आवाज़ हो, शैलेंद्र सिंह का मैजिक हो, सब कुछ सुनने को मिलता था हमें उस दौर में। हर आवाज़ में अपना एक रंग था, किसी की आवाज़ में मोहब्बत तो किसी में शरारत, किसी में दर्द और किसी में ज़िंदगी की सीधी से खुशी। और कमाल की बात तो ये थी कि आवाज़ सुनते ही पता लग जाता था कि ये किसकी आवाज़ है। तो चलिए एक और खूबसूरत यादगार गाना लेकर आए हैं आपके लिए, किशोर दा आशा भोसले का कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म ये वादा रहा। और इस गाने को हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम। स्पेशली गोज़ आउट फॉर मिस्टर गोविंद रघुनंदन जो इस वक्त वाकवा से

हमारा साथ दे रहे हैं इक्वली गोज आउट फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा प्यारी सी बेटी दीक्षा और साथ में युधीश योगेश सभी परिवार के नाम सभी रघुनंदन परिवार के नाम और हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चलिए दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत गानों को आप यहां पर एंजॉय कर पाएंगे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620052506200 पर मैं परी कर रही हूं आपका इंतजार

और जी हां दोस्तों लेकर आए हैं प्रोग्राम सुहाना सफर मैं हूं परी आपके साथ सफर के 3 बजे तक Yesterday Years के गानों का सिलसिला यहां पर जारी है यानी कि गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड और उसी के प्यारे गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं उस दौर के गीतों में लफ्जों में भी एक अपनी ही दुनिया थी शैलेंद्र साहिर लुधियानवी मशरू सुल्तानपुरी शकील बदयानी राजेंद्र किशन जैसे लिरिसिस्ट ने सिंपल इमोशंस को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए और ऐसी लाइंस जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं कभी एक मुलाकात को गीत बना दिया और कभी इंतजार को कभी जुदाई को और कभी बस एक शाम को इन्हीं लफ्जों की खूबसूरत महफिल हमने यहां पर सजाई है आपके लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए चल रहे हैं यहां पर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन जी हां दोस्तों मैं हूं परी आपके साथ आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620052506200 पर हो रहा है आपका इंतजार खूबसूरत गीतों के साथ आप भी हमारे हमसफर बने हुए हैं तो चलिए यहां पर एक और प्यारा सा गाना आपके नाम लता मंगेशकर रफी साहब की आवाजों के बाद लेकर आए हैं किशोर दा और आशा जी की आवाजें फिल्म रिक्शा वाला और उसी फिल्म का ये गाना द एवरग्रीन मेलोडियस सॉन्ग हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस पर कनेक्टेड है RM3 रेडियो मनोरंजन पर

listening to RM3 Radio Manoranjan. और यहाँ पर प्रकाशवति जी सात समंदर पार बेल्जियम से हमारा साथ दे रही हैं. 18 डिग्रीज वहाँ पर है, सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रही हैं. कहती है कि मौसम आशिकाना और इसे और भी आशिकाना कर दीजिए इन खूबसूरत गीतों के साथ. तो चलिए यहाँ पर ये जो खूबसूरत गाना है इसे हम आपके नाम चला रहे हैं. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. और ऐसे ही आपके मैसेजेस आप हम तक पहुँचा सकते हैं. रहेगा आपका इंतज़ार 5250-6200. जी हाँ, इसी नंबर पर हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार. साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. अभी के लिए शामिल होता हुआ ये गाना आप सभी के नाम.

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुराने गानों का कारवां आपके लिए हम सजाए रख रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर हमारा ये प्रोग्राम। आज के ऑटोट्यून के ज़माने में वो पुराने सॉन्ग्स कितने सूदन लगते हैं और वोकल्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी कितने फेमिलियर लगते हैं। पियानो, वायलिन, फ्लूट, तबला, गिटार, सब कुछ लगता है कि एकदम यूनिक साउंड देता था। तभी एक छोटा सा म्यूजिकल पीस पूरे गाने का मूड बदल देता था और शायद इसीलिए पुराने सॉन्ग्स को बार बार सुनने पर भी दिल करता है कि इन गानों को हम सुनते जाएं। मन जो है वो कभी नहीं भरता इन गानों के साथ। और ये जो गाना था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, दैट वाज अ हार्ट टचिंग सॉन्ग। यानी कि जब हार्ट ब्रेक भी होता था तो लगता था कि क्या हार्ट ब्रेक इतना खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि गाना ही इतना खूबसूरत बना था। और आज भी देखिए, इतने सालों बाद इस गाने को हम एंजॉय कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक की बात करें या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स की, खूबसूरती तो ये थी कि रोमांस को हमेशा बड़े जेस्टर्स की जरूरत नहीं थी। कभी एक नज़र, कभी एक मुलाकात, कभी दूर से किसी को देखना और उस एहसास को एक पूरे गीत में ढाल देना। मोहब्बत को कहने का अंदाज एकदम सटल था लेकिन काफी गहरा था। तो इसी नरम खूबसूरत रोमांस के नाम हमारा अगला ये क्लासिक हिट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें। फ्रॉम द फिल्म अवतार वी हैव दिस गाना आपके नाम। सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, मैं हूं परी आपके साथ। रेडियो मनोरंजन, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620 पर।

और ये गाना हम स्पेशली चला रहे हैं निर्मला जी जो फ्लैग से हमारा साथ दे रही हैं इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके पति के नाम आपके दो बेटों के नाम सभी परिवार के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चलिए सो खूबसूरत गाने चलते रहेंगे ऑन आरएम3 रेडियो मनोरंजन अभी के लिए यह है आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफर मैं हूं परी आपके साथ सपहर के 3 बजे तक

आज तो मौसम यहाँ पर काफी सुहाना है लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हैं तो चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चला रहे हैं साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ दोपहर के 3 बजे तक इस कारवां को आपके लिए हम सजाए रखेंगे अगले गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर और साथ ही हमारे जितने लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं ये गाना आप सभी के नाम सभी सुनने वालों के लिए जो इस वक्त पुराने गानों के इस कारवां को एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन चलिए दोस्तों इसी गीत के साथ बढ़ेंगे समाचारों की ओर लौट कर आएंगे समाचारों के बाद साथ निभाइए हमारा और खूबसूरत गानों का ये जो खूबसूरत सफर है इसे आपके लिए हम कंटिन्यू करेंगे आज दोपहर के 3 बजे तक

0: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से. रजनी आपको नमस्कार.
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस. इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित जेएनजे सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया. मंत्री अशोक सोभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी

0: वार्ता के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नवामागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध जनों की सुरक्षा एवं सम्मान मजबूत करने की सरकारी कटिबद्धता दोहराई। इसके मद्देनजर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार संबंधी कार्यों में प्रगति हो रही है। इन सुधारों का मकसद है हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना और उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाने में सुविधा प्रदान करना। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल विदेश के औपचारिक मिशन पर हैं। वे तुवालु, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के आमंत्रण के बाद तुवालु और फिजी में आयोजित पूर्व कॉप 31 बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति अगले 9 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में रॉबर्ट हंगले अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। कर्नाटक एमबीसी न्यूज़ के रेडियो विभाग को दिए गए एक बयान में व्यवसाय मंत्री माइकल सिकियन ने एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की प्रशासनिक परिषद के रद्द किए जाने का इरादा व्यक्त किया। इसी शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सामने इस पर चर्चा की जाएगी। मंत्री के अनुसार वे एसटीसी की जिम्मेदारी में कुछ पदार्थों के स्टॉक भंडारण से संतुष्ट नहीं। मॉरिशस विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महानुभाव का निधन। वे मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर थे और एक प्रसिद्ध भाषाविद भी। देश हुकुम से क्रियोल मॉरिशिया के हक में उन्होंने अहम कार्य किए हैं। वे मातृभाषा को काफ़ी अहमियत देते थे और कई वर्षों तक वे हमारी भाषाई विरासत की नींव रखने में बिता रहे थे। विदेशी समाचारों में दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को क्रश होने से बचाने वाले भारतीय विमान चालक स्मित मचार की इसराइल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मचार को एक बड़ी घटना को टालने का भी श्रेय दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मचार घायल हालत में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बची कुची ताकत से कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद मचार को घायल हालत में देखकर प्लेन में मौजूद दूसरे यात्री और क्रू मेंबरों ने पायलट पर काबू पाया और प्लेन में मौजूद दो पायलटों ने प्लेन को सऊदी अरब के तबुक में सफलतापूर्वक उतारा। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। रॉयल रोड न्यू ग्रोव में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री हीरानंद गंगा जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी आज दिन के तीन बजे उनके बेटे श्री यश गंगा के घर रॉयल रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शुक में रुबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio.

और जी हां दोस्तों सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए सावो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं तो बच गए रह 7 मिनट थर्सडे आफ्टरनून और खूबसूरत गीतों के साथ हमने आपके इस कारवां को यहां पर सजाए रखा है कुछ ऐसे गीत जो हमेशा से रहे हैं खास और पॉपुलर और इन गानों को आप सुन रहे हैं इन गानों को आप हमारे साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर सुपहर के 3 बजे तक ऐसे ही कुछ प्यारे गीत लेकर आए हैं आपके नाम एंजॉय दिस वन

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2:25 हो गए हैं और सुहाना सफर हमारा ये प्रोग्राम अभी भी जारी है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ गाने फिल्म से ज्यादा, किसी सीन से ज्यादा अपनी अलग मेमोरी बन जाते हैं। शायद पहली बार सुना हुआ गाना, रेडियो पर बजता हुआ गाना, घर में किसी की फेवरेट गाने की आवाज, सालों बाद वही ट्यून सुनने पर वो वक्त एक बार फिर से याद आ जाता है। म्यूजिक की तो यही

सबसे खूबसूरत बात है कि यादें खत्म नहीं करता, उन्हें आवाज दे जाता है। और आज इन्हीं गानों को, इन्हीं गीतों को हम अब तक लेकर आए हैं। सो अभी के लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक मुकेश साहब और रफी साहब की आवाज में, हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

0: वैसे देखा जाए तो अलग अलग किस्म की जोड़ियां आई हमारे इस गोल्डन एरा में. वी इट द जोड़ी ऑफ किशोर कुमार मुकेश साहब या फिर हमारे जो सिंगर्स रहे यानी कि किशोरदा और लता जी का गाया हुआ कोई ड्यूएट, आशा भोसले लता जी के गाए हुए कुछ गाने, किशोरदा और रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ वंडरफुल ट्रैक्स, और कुछ गाने तो ऐसे भी थे जहाँ पर इतने सारे लेजेंड्स की आवाज़ हमें एक साथ सुनने को मिली. बीट आशा भोसले, बीट लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, सभी के प्यारे प्यारे वॉइसेस हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो था द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड एंड उसी मैजिक को यहां पर हम रिक्रिएट कर रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. मैं हूं परी आपके साथ सुपहर के 3 बजे तक.
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी. सात अजूबे

और जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत गाने हम आपके लिए यहाँ पर चला रहे हैं गोल्डन एरा में प्लेबैक सिंगिंग। अगर स्पेशली मेल प्लेबैक सिंगिंग की बात करें तो दो बहुत अलग लेकिन इक्वली मेमोरेबल कलर्स थे, मोहम्मद रफ़ी की वर्सटैलिटी और किशोर कुमार की नेचुरल एक्सप्रेसिव आवाज़। एक ही इमोशन को दोनों अपने अपने अंदाज में कितने अलग रंग दे सकते थे। ये हिंदी फिल्म म्यूज़िक की सबसे फैसिनेटिंग बातों में से एक है और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे हमने कहा कि वो दौर ही कुछ अलग था, वो टाइम ही कुछ अलग था और अभी के लिए तो बस ऐसे ही कुछ यादगार गीत आपके लिए हम चला रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गानों को गुनगुना रहे हैं, गानों को सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो हमारे साथ कनेक्टेड है, हमेशा साथ निभाते हैं, हमेशा प्यार हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अभी के लिए एक और खूबसूरत गाना आप सभी के नाम, बात करी है वर्सटैलिटी की, सो वी हैव दिस खूबसूरत ट्रैक आपके लिए। साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ अब समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा. मुलाकात होगी कल इसी समय इसी चैनल पर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. एक बार फिर लेकर आएंगे सुहाना सफर कल ठीक 12 बजे. तब तक के लिए हमारा साथ निभाइए ऑन रेडियो मनोरंजन. खूबसूरत गीतों का कारवां, खूबसूरत प्रोग्राम्स का कारवां. मुलाकात होगी जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुनगुनाते रहें.

0: accompagne grand match, paie attention à l'OMBC Play. Champions League, La Liga, Europa League, Aster, suive. Ben plus grand match, côte été, l'automobile avec MBC Play Sports Pack. Zis, dès 199 roupies pour un mois. Et que surtout, peina engagement, peina abonnement. T'as envie de guetter ça moi là, te prends te pack. T'as envie de continuer, te choisir. Simple, flexible et que football là avec toi. Download MBC Play, prends te Sports Pack, profite tout ben chaîne New World et que rentre dans l'action. NBC Play Sports Pack, les grands matchs sont ici. Plus d'infos sur le 402-8000.
1: मिलते हैं रजनी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस और राष्ट्रसंघ विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग का जायजा ले रहे हैं। 2024-2028 सहयोग कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बालाक्लावा के मॉरिशस होटल में लगी। इसकी अध्यक्षता मंत्री रितेश डॉम्फर और लीजा सिंह ने की। दोनों पक्षों का मानना है कि नई चुनौतियों का सामना कर पाने के लिए हमारी साझेदारी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति नहीं है। आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित जेएनजे सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया। मंत्री अशोक सुभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्याना वोमागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध लोगों की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के वास्ते सरकारी कटिबद्धता दोहराई। इसके

0: नजर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार संबंधी कार्यों में प्रगति हो रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना और उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाने में सुविधा प्रदान करना। कड़ाट एमबीसी न्यूज के रेडियो विभाग को दिए गए एक बयान में व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्योन ने एसटीसी की प्रशासनिक परिषद के रद्द किए जाने का इरादा व्यक्त किया। इसी शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सामने इस पर चर्चा की जाएगी। मंत्री के अनुसार एसटीसी की जिम्मेदारी में कुछ पदार्थों के स्टॉक भंडारण से वे संतुष्ट नहीं। वाकवाई स्थित एसएमएफ जिमखाना आज सुबह कार्रवाई स्थल में तब्दील। जी हां, असल में वहां पर हस्तक्षेप करने वाले कुत्ते, राहत कार्रवाई और सशस्त्र गुटों को नाकाम करने की कार्रवाइयां चलाई गई। मॉरिशस एवं रेनियन टापू की ताकतों के बीच सहयोग के अंतर्गत एक सिमुलेशन कार्रवाई का आयोजन हुआ। मसलन एक इमारत के पास एक धमाका होना, छत से घायलों को बचाना और कुछ ही मिनटों में लोगों की जान बचाना, एसएमएफ और जेपीएम की टीमों को इसी सिलसिले में हस्तक्षेप करना था। विदेश समाचारों में भारत के रुख करते हैं। तमिलनाडु में 90 बांधों में पानी का भंडार उनकी कुल क्षमता से लगभग 34% तक गिर गया। लगातार गर्मी के कारण 63 जलाशयों में पानी उनकी क्षमता के 1/4 से भी कम रह गया, जिससे कि सिंचाई में काफी दिक्कतें हो रही है। दिलेरी की कहानियां रोजाना की जिंदगी से निकल आती है। कल फ्लाई दुबई की फ्लाइट में हुए वाकये से कई हीरो सामने आए। खून से लथपथ फ्लाई दुबई के कॉकपिट के फ्लोर पर पड़े कैप्टन स्मिथ मचार ने बड़ी जद्दोजहद के बाद कॉकपिट को खोलने वाला बटन दबा दिया। उनके इस कदम ने वो काम किया जिससे लगभग 180 लोगों की जिंदगी बच गई। कॉकपिट का दरवाजा खुलते ही यात्री और क्रू सदस्य अंदर घुसे और हमलावर पायलट को काबू में किया तथा एक मिनट में 16,000 फीट नीचे जा चुके प्लेन को काबू में किया। और इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मचार की तारीफ की। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर आरएम3 रेडियो।

आप सभी को नमस्कार और इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आशा करते हो कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और मैं एक बार फिर आपके समक्ष आई हूँ भी हूँ। तो और हमारे साथ जो है तकनीकी साथी है फैजन नोटाली, प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और जिनेश द्वारा निर्मित ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप भी हमारा साथ देंगे क्योंकि आज का जो विषय है एकदम ही सराहनीय विषय है, एकदम ही मतलब बहुत ही अच्छा विषय है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं बेझिझक हमारा साथ दें। इस प्रोग्राम के जरिए अपने अपनी राय, अपने अपना संदेश आप दे सकते हैं या जो भी प्रश्न है आपके पास बेझिझक 402-808-5 पर आप हमें फ़ोन करें। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम में से

0: हर व्यक्ति एक दिन उस पड़ाव पर तक पहुँचेगा, ये तो जाहिर है। और आज तो 1 अक्टूबर है। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, और ये दिन हमें अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, उनके अधिकारों, उनकी गरिमा और उनकी आवश्यकताओं पर विचार करने का अवसर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे अनुभव और हमारी विरासत के वाहक हैं, पर यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या हमारा समाज वास्तव में उन्हें वो सम्मान, समय, सुरक्षा और अपनापन दे पा रहा है जिसके वे हकदार हैं? तो इन्हें सवालों पर, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग ज़रूर भाग लेंगे। और हमारे जो दो अतिथि हैं, एक श्रीमती अनीता गोविंद जी हैं और श्री हेमंत राम गोविंद जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग आए हुए हैं। आप दोनों समाज सुधारक हम कह सकते हैं। तो इस विषय जो अभी हमने कहा कि आज 1 अक्टूबर जो है हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अनीता जी हम आपसे ये सबसे पहले पूछेंगे, जो वृद्धावस्था ये शब्द है, आपके लिए क्या क्या आपके सामने क्या आता है, क्या ये इसका मतलब क्या है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आपने हमें आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। एक तो हम समाज सुधारक नहीं हैं मगर समाज सेवक हैं।
0: सेवक और सुधारक,
1: सुधारक हम वैसे सुधारक तो नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते हैं।
0: ये तो आपका बरप्पन है जो आप ये कह रहे हैं कि आप उसको सेवा के रूप में हैं और सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं।
1: अनुराधा जी, ऐसा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो एक नए दिन तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, हम इससे भाग तो नहीं सकते, ये तो प्राकृति का नियम है। जन्म लिए, बड़े हुए, जवान हुए, फिर इसके बाद हमें बुढ़ापा का सामना तो करना ही पड़ेगा। मगर मेरे ख्याल से सबसे सुंदर ये अवस्था जो है ये बुढ़ापा ही है, क्योंकि जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास इतने सारे अनुभव हो जाते हैं, तब बुढ़ापे में आप समझ पा सकते हैं कि जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है, और तभी आपको महसूस होता है कि किस उद्देश्य से आप इस संसार में आए और आप क्या कुछ कर पाए संसार में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए।
0: और भाई हेमंत जी, आपके नज़रिया में जो वृद्धावस्था ये कौन सी है? सब कबो कबो हमने बोलिया जा कि जो वृद्धावस्था जो है कब ऐसे सुनने जा कि ये एक श्राप है, ये अभिशाप है, ये कहाँ तक सच है?
2: वृद्धावस्था हम बोला एगो आशीर्वाद है भगवान के, कि आप अभी वृद्ध हो गल हुआ, अभी जीते हुआ। कैसे बोलते हैं, एक कहावत है, जान है तो जहान है, क्योंकि कितने लोग छोड़ कर चले गए,
0: हाँ
2: आप यहीं तक है। मैं बहन जी से बहुत सहमत हूँ, अब उन्हें कहा दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड, द गोल्डन एज। मुझे याद आता है हमेशा चिनोगोसी का, चिनोगोसी 1980s में 79-80 में एक गाना गाया था, ला वी कोमांस आ 60 ans, क्योंकि जब इतना साल हो गया, इतना साल आपने जी लिए तो उतना मतलब टेंशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पीछे आपका करियर है,
0: तब आप जिएंगे।
2: पीछे आपका, आपका पीछे आपका वो, हाँ वही, इन द सेम लाइन ऑफ थिंकिंग, आपका पीछे आपका अनुभव है। ओके, जब जवानी में सोचते थे हम कैसे मेरा वो घर बनेगा, किससे मैं शादी करूँगा, कितना बच्चे हो गए, मेरे करियर का क्या होगा, इस तो सब हो गया। अभी तो एकदम कैसे बोलते हैं, ढीठ हो गए हुए, विद एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ,
1: यू आर फुली प्रिपेयर्ड,
2: या फुली प्रिपेयर्ड, एंड देन यू नो व्हेन टू लेट गो, कब जाने देना, और आपके यहाँ सब समय आपके हाथ में है, यू आर फ्री। जितना ये जितना इच्छा था वो

0: पूरा करने के लिए तो आपके पास समय है. द चॉइस इज योर्स.
1: जैसे कि अनीता जी ने बोला बहुत ही सुंदर पढ़ा.
0: एग्जैक्टली. और आपके अनुभव है पीछे, और आप इस अनुभव से बहुत कुछ जीवन में सीख लिए.
1: अच्छा, ये जो पहली अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाते हैं, क्या सचमुच इतनी ज़रूरी है?
2: बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में. देखिए क्या होता है कि सभी कुछ हम ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, मगर ये ग्रांटेड नहीं है. यहाँ पर हम ये समझाने की का प्रयत्न किया जा रहा है कि ये जो दिवस है हमको याद दिलाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग है. जैसे भाई जी ने कहा, अगर मान लिया जाए किसी की मृत्यु हो गई तो वो तो उस स्तर पर नहीं आ पाएगा, वो तो चला गया, मगर अगर हम जिंदा है, हमारे दिल धड़क रहा है, तो इसका मतलब है कि हम समाज में है, अपने परिवार में है. तो अगर कम से कम साल में एक बार ये परिवार तो याद करती हैं प्रतिरोज, मगर जितने वैसे दुनिया के लोग हैं, और उनको याद, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि आज एक खास दिन है जो हम वृद्ध लोगों के लिए मना रहे हैं. मगर यहाँ पर अनुराधा जी, मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि ये जो वृद्ध अवस्था है ना, ये कभी कभी कम लोग सोचते हैं. ये इसके जब हम वृद्ध तक पहुँच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह, मगर ज़्यादातर क्या होता है, हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है.
1: वो कैसे?
2: देखिए क्या होता है, एक तो जब हम जवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सब कुछ ठीक चलता है, हम कमा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर एक ऐसा समय आता है जब वैसे 100% नहीं मगर कुछ प्रतिशत तक हम अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं, समाज पर निर्भर करते हैं.
1: कुछ प्रतिशत जैसे आपने कहा, सभी लोग
2: 100% नहीं. क्या होता है जब एक इंसान बीमार होता है, ये तो है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, बहुत स्वस्थ है, मगर काफ़ी लोगों में आप देखेंगे कुछ बीमारी है या कुछ परेशानी है. तो ये होता है, वो कहते हैं कि इट इज़ ए गोल्डन एज, मगर वो गोल्डन एज है, पर जो भुगत रहा है अपने बुढ़ापे को वो खुद जानता है कि किस स्थिति में है. और जब अगर इस समय बाद में मेरे ख्याल से आप इस पर बात करेंगे, अगर हमारे पास हमारे साथ इर्द गिर्द में कोई ऐसे लोग हैं जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ दे सके, तब तो वो तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना.
1: जब परेशानी समस्या की बात कर रही है, हमारे भी जो बुजुर्ग हैं, लोग की कौन कौन समस्या हुआ था?
0: देखिए हाई बुजुर्ग लोग के एक वो चीज़ चाहना एक्सेप्टिव होगी कि देखो एक नया गाड़ी खरीदोगे, 7 साल के बाद आपको फिटनेस जाना पड़ेगा. अभी आपको 60 साल हो गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ, वो तो आपके शरीर तो बुढ़ापा आएगा उसमें. कहते हैं कि डिजीज ओल्ड एज एंड डेथ, दिस इज ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ. तो सच बहन जी ने सच कही बहुत, कि बुढ़ापा के समय में वो हेल्थ इश्यूज आता है, जाबे तौशों मना लिखे ये सब होता है, लेकिन हम उसके साथ हमें जीना चाहिए. एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ, देखो 1750 में इंग्लैंड में जब कोई जन्म लेता था एक पुरुष, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 33-34 ईयर्स था. वीमेन का 38 ईयर्स, उसके बाद वो मर जाते थे. मॉरिशस में 1950 में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 60 ईयर्स वो जीते थे. 60 ईयर्स लेडीज, 55 मैन. अभी मैंने ये फिगर्स देखा है मॉरिशस के बारे में, वीमेन अबव 75 और मैन अराउंड 70. मतलब क्या है, हम ज़्यादा जीते हैं, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत बढ़ गया. क्यों बढ़ गया है? क्योंकि सिर्फ दवाई के कारण नहीं, हमारा जो लिविंग कंडीशंस है, लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशंस, सुविधा, क्लीनलीनेस, पानी, अच्छी पानी, ये हेल्थ सर्विसेज, सब कुछ लेकर तो हम ज़्यादा जीते हैं. तो हमें खुश होना चाहिए. इट इज़ जस्ट लाइक लुकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हाफ फुल हाफ एम्प्टी. उसमें संतोष ही लाना, संतोष लाना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो सच्चाई है जीवन का, आए हैं सो जाएंगे.

0: राजा रंग फकीर हकी नहीं, तो समस्या आएगा, बहुत से समस्या आएगा, पारिवारिक समस्या आएगा, पैसा का समस्या आएगा, पैसा कम मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या आएगा, और ओल्ड एज में डिप्रेशन हो जाएगा, कैसे सोचते हैं कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो जैसे तभी मैंने कहा अगर आपके पास 10 रुपये है तो 11 रुपये नहीं खर्च करना चाहिए, 10 ही रुपये के बारे में सोचना चाहिए, और हमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट हैं तो जीवन ये आप पर निर्भर है, अगर आप खुश होना चाहते हैं वो तो दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो खुश हो सकते हैं।
1: अच्छा, हमने के देश मॉरिस में बुजुर्ग लोग के प्रति कितना सहायता सकब जब देवल गलबा
0: रेखा मेरे को बात बोला, हम हमेशा मॉरिस के बराए करीला, खाली हम नहीं बहुत बड़ा बड़ा लोग दुनिया के लीडर्स लोग बड़ाई करेगा, इतना छोटा टापू बा हमने के, सोना नहीं बा, चांदी नहीं बा, पेट्रोल नहीं बा, कुछ नहीं बा, सब के पहुँचों मिलेगा हमने के एगो सिस्टम बा प्रोटेक्शन। देखा हमने बुजुर्ग लोग खातिर एगो लालवा सरकार पास कर रहा 2005 एल्डरली प्रोटेक्शन एक्ट, तभी बोल जाके एगो यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1990 में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली वो डिक्लेयर हुआ था 1st October 1990। तो उसके बाद मॉरिशस में बहुत से डेवलपमेंट हुआ, इतना ही डेवलपमेंट हुआ हमने के फैमिली अफेक्टिव हुआ, फैमिली कैसे अफेक्टिव हुआ, चाइल्ड अब्यूज से चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1994 में, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1997, उसके बाद बुजुर्ग के प्रोटेक्शन प्रोटेजे के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एल्डरली एक्ट 2006 में वो प्रोक्लाम हो बा। तो ये लालवा बहुत सिवे है, ढेर कोई नहीं जाने रहा, एगो बूढ़ा एगो एगो वृद्ध जन ओके लौकिक ही कोई ओके अब्यूजे करा था पैसा के बारे में कि ओके मात खरीदे करा था उसकी हॉटलाइन बा 172 NF NF NF 24 7 172 NC2 9 4। तो वो प्रोटेक्शन ओदे ओके सकेला मिले और मजिस्ट्रा सके रेस्पोंडेंट जन करा था ओके दुख दुखी करा था ओके सकी मजिस्ट्रा के ओहदा देवे कि ऐसे ऐसे नहीं करबे तो के हम सकेला जेल हो लमान खूब बड़ा है।
1: तो ये सब प्रोटेक्शन
0: प्रोटेक्शन बहुत है, और बहुत से देश में इतना पेंशन ये प्रोटेक्शन ये और अभी तक कुछ भी आप कहेंगे हमारा जो परिवार का जो टिश्यू है टिश्यू फैमिलिया बहुत स्ट्रांग है अभी तक।
2: मैं ये कहना चाहूँगी बहुत आपने बहुत काफ़ी जानकारी दी, देखिए क्या होता है ये तो सरकार की ओर से, अगर जितने भी आज हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है। क्या होता है कि अब मान लिया जाए जवानी में आपने बहुत अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, जब एक ऐसे उम्र आ गया तो आप बाहर का खाना खाते हो, आप योगासन के बारे में सोचते भी नहीं हो, या जैसे जैसे बहुत ही गलत रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो इसका असर बाद में बुढ़ापे पर ज़रूर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये आजकल तो हम इस पर बहुत बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हर व्यक्ति का ये हम किसी चीज़ को भी ग्रांटेड नहीं लेंगे क्योंकि क्या होता है कि ये जो जीवन है एक ही बार मिलता है, और अगर हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को हम संभाल कर रखें, अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखें, और अच्छी वैसे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अनुराधा जी कि जब मान लिया जाए 60 साल रिटायर हो गए हैं तो वे लोग सोचते हैं तो मेरा जीवन तो ख़त्म हो गया,
1: जो नहीं है,
2: नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाई जी ने कहा कि जीवन 60 साल के बाद ही शुरू होता है ना, आपने कहा तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि इतने सालों तक आपने क्या किया, बच्चों की देखभाल की, पढ़ाई लिखाई में अपना जीवन व्यस्त किया, आपने बहुत बड़ा शानदार मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, ये सब किया आपने, इसलिए किया ताकि बाद में जब बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो कम से कम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आशा और निराशा में

0: एकदम हमारे बड़े बुजुर्ग दब कर रह गए हैं। आशा क्या है कि हाँ मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा आदमी बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, तो एक ना एक दिन यही आशा के साथ मैं जीऊँगा कि मेरा देखभाल तो ज़रूर करेगा। नहीं, ये आशा रखना ही नहीं चाहिए। वो जो आशा रख रहे हैं वही आशा निराशा में बदल जाएगा, क्योंकि आप अपने अपना जीवन, आप जब संसार में आए, आप अकेले आए थे, न बच्चों के साथ, न परिवार के साथ, किसी के साथ आप नहीं आए। ये आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है। ये कभी होता है कि जितना मैंने कुछ कमाया तो मैं सभी बच्चों के नाम पर रख दूँ, बच्चों को ये दे दूँ, बच्चों को वो दे दूँ, क्योंकि नहीं, एक दिन होगा जब वो मेरे बारे में सोचेंगे। आज मैं मुझे क्षमा कीजिएगा, आज बच्चों के पास समय नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। ये मैं नहीं कहती कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वो देखभाल करते हैं, मगर ये है, एक तो आप तो अलग अलग रखते हैं, उसका अपना घर है, वो बड़े बुजुर्गों का अपना घर है, बच्चों का अपना घर है, आएगा सब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आपको देख कर चला जाएगा।
1: इसी पर हम पूछेंगे अब थोड़ा परिवार और रिश्ते पर जुड़ा प्रश्न। आगे जिन हो संयुक्त परिवार रहा, संयुक्त माने कि सब कोई, अब तक छोटा छोटा परिवार, ये गलत है क्या? ये गलत है?
0: नहीं, गलत तो नहीं है, मैं कहूँगी गलत नहीं है और गलत भी है, दोनों है,
1: दोनों है।
0: क्योंकि देखिए क्या होता है, आज हम तुलना नहीं कर सकते हैं, हम जवान तो नहीं है, हम भी बुजुर्ग बन गए हैं, तो हमारा जो जीने का जिस प्रकार से हम जीते थे पहले, आज हमारे नौजवान उस प्रकार की जिंदगी नहीं व्यतीत करते हैं।
1: वो तो है,
0: है ना। उस समय हम जब शादी करके जाते थे तो हमें सिखाया जाता था, ये तुम्हारा सास ससुर है, ये तुम्हारे देवर है, ननद है, कोई भी तुम्हारे, जब तुमने शादी की, ये हमें सिखाया जाता है भाई जी कि देख, पहली बात, जब तुमने इस परिवार में शादी की, तुमने लड़के के साथ शादी नहीं की, पूरे परिवार के साथ शादी की, है ना। दूसरी बात, जब शादी करके जा रही हो, तुम्हारी अर्थी ही उस घर से उतरे निकलेगी, हमें ये सिखाया जाता है। और हम तो कर्तव्य पालक थे, हम तो पालन करते थे, और हमारा जो संस्कार था, जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग होती थी, लालन पोषण, वो अलग तरीके से किए जाते थे।
1: तो इस पर भाई जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: अभी कल परसों एक रिसर्च में देख रहा था, बहुत बड़े रिसर्चर्स द्वारा, तो उन्होंने ये देखा कि एक सबसे बड़ी खुशी के समय जो है बुजुर्ग में, वो जब अपने नाती के साथ रहते हैं, नाती पोता के साथ रहते हैं। दिस हैज़ बीन प्रूवन बाय रिसर्च। इतना उसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि उनका वो जो एजिंग प्रोसेस है ब्रेन का, वो बहुत कम हो जाता है और एकदम खुशी से जीते हैं। हमने बात की संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमारे संस्कृति में न्यूक्लियर फैमिली कभी नहीं है। अभी जैसे जा रहा है दुनिया के समय में, अभी हमें, मुझे एटलीस्ट, मुझे ऐसे एज ए सोशियोलॉजिस्ट,
1: तो कैसे आजकल के हमने जो बुजुर्ग, हाँ, आज के पीढ़ी के साथ अपन ढाल दें?
2: नहीं, आपसे बोला था, जैसे समय आवा था हमने के परी गते गते वापस एक्सटेंडेड फैमिली में आवे के, क्योंकि अगर मैं बहुत बहन जी अच्छा बोलन, हाफ वे उनका लाभांतास है, डिजावांतास है। अभी के समय अभी लौकत रिसर्च बोला था कि जौन लड़का लोग एक्सटेंडेड फैमिली में, उन लोग के सोशलाइजेशन, उन लोग बड़ा हो लन जा, उन लोग के वैल्यू सिस्टम एकदम डिफरेंट, और जौन न्यूक्लियर फैमिली में उन लोग के वैल्यू सिस्टम वेरी वेरी डिफरेंट। न्यूक्लियर फैमिली उन औसन परिवार में देखभाल ज़्यादा सेल्फिश इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लेकिन वो जो संयुक्त परिवार है उसमें उनका वो बड़े लोग के ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनके पर्सनालिटी दूसरा है। लेकिन क्या है कि अभी का समय जैसे हम पिछले एक प्रोग्राम में किया था, पीपल आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, वो खुद को देखते हैं। तो वापस जब मैं आऊँगा इस विषय पर, अभी कोई बुजुर्ग है तो उसको एकदम वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, पैसा के बारे में, केयर के बारे में, अनलेस यू आर डिसेबल्ड, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हमको बुजुर्ग लोगों को मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ्स। कैसे हम टेक कंट्रोल ऑफ द लाइफ्स ऑफ योर लाइफ्स, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर कहता था, आप मरना चाहते हैं जल्दी से, दिन भर बैठे रहो। आप जीना चाहते हैं, मूवमेंट करो,

0: और बहुत से ऐसे चूज है, अब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, संबंध अपना दोस्तों से मित्रों से वो कनेक्शन जारी रखे, मिल जुल कर आप बाहर निकलो घर में सिर्फ टेलीविजन के आगे सब। तो ये योग प्राणायाम अभी के समय में टीवी द्वारा इंटरनेट द्वारा बहुत से कुछ है जिससे हम ज्ञान हो ज्ञान लेकर अपना जीवन में उतारें। तो बहुत फर्क होगा अगर ऐसा डिसिप्लिन, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अभी के बच्चे लोग अभी पैसे, पहले के समय में सोचते थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरा वो नहीं है अभी।
1: तो इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए हम रोक रहे, थोड़ी ही देर में हम लोग हमारे बुजुर्ग को किस तरह से उन लोगों के जीवन को खुशहाल जीवन बनाए थोड़ी ही देर पर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं।

दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे दो मेहमान हैं श्रीमती अनीता गोविंद जी और श्री हेमंत राम गोविंद जी। और हमारा जो विषय है वो अंतर

0: राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर। तो जितना मतलब सोशल सपोर्ट हमने के बुजुर्ग लोग के मिलेला ये बहुत आवश्यक है, जैसे अभी हमने बोली जा। अब आप दोनों के देखे में हमने के जन बुजुर्ग जन है उन लोग के जीवन के कैसे खुशहाल बनाए के चाहेला।
1: खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हमारे बड़े बुजुर्ग। जैसे भाई जी ने कहा कि हमारे नाती पोते के साथ अगर हम जीवन व्यतीत करें तो ये तो सोने पे सुहागा बन जाता है। क्या होता है कि हम अपेक्षा ना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी चीज़ पर। जैसे ज़िंदगी जा रही है उसको आप ऐसे ही जाने दीजिए, पर सबसे बड़ी बात आप अपने बारे में सोचिए। बच्चे तो है, और कभी हम गलत धारणा से आगे बढ़ते हैं कि हमारे बच्चे हमें हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे बच्चे हमें अपना नहीं मानते। ये जब इन सब सोच के बारे में हम जिएंगे तो हम बहुत दुखी रहेंगे। क्यों? जैसे मैंने कहा पहले कि हमारा जो जीवन था पहले वो अलग था, हमारी जीवन अलग अलग तरीके से हम जीवन व्यतीत करते थे, आज अलग है, क्योंकि वे बहुत व्यस्त होते हैं। दे आर सो करियर ओरिएंटेड, हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर अपने नौकरी के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में। वैसे वो जिस प्रकार से आपने प्रगति की, जहाँ तक आपने प्रगति की उतना ही प्रगति बच्चे भी करना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके हमने कुछ दिया भी हो मगर उससे वो दुगना करना चाहते हैं, दुगनी प्रगति करना चाहते हैं। तो हमें अगर हम बैठकर सोचते रहे कि मेरा बेटा मुझसे तो प्यार ही नहीं करता, मेरी बेटी तो मेरे बारे में सोचती ही नहीं, मुझे ये नहीं देता, वो नहीं देता, ये नहीं। मगर जब तक आप कंप्लेन करेंगे जीवन में, क्योंकि देखिए अभी तो एक ऐसा समय आ गया है जहाँ समझदारी से काम लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमने नौकरी की, हमारे पास आमदनी है, पैसे हैं, हम डॉक्टर के यहाँ हम जा सकते हैं। ये ऐसा कोई बच्चा बहुत कम होते हैं मंगमान या जब बीमार है कि वे लोग आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाएंगे, जहाँ तक वो पूरी कोशिश करते हैं आपके बारे में। मगर ये है कि हम ये इंतज़ार करते हैं कब कि मेरा बेटा आकर मेरे साथ एक घंटे दो घंटे पूरा दिन बैठे मेरे साथ, या बेटी अपने घर परिवार छोड़कर मेरे यहाँ आकर मेरे जितनों घर का काम है वो करे। ये नामुमकिन है, हमें इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और ये हम अपने बच्चों के लिए तो नहीं जी रहे ना, हमने जिए थे अपने बच्चों के लिए, हम अपने लिए जी रहे हैं। आज तो समाज में इतने सारी गतिविधियां हैं, हम आउटिंग पे जा सकते हैं, ये तो आज हम आज के लिए कितने वो बाहर जाते हैं, वो खाते पीते मौज उड़ाते हैं, तो यू हैव टू जॉइन इट, क्योंकि आपने तो जिंदगी आप बच्चे के लिए आपने जी ली, आप अपने लिए जियो भैया। अब इतने कभी मैं रेडियो द्वारा सुनती हूँ, हमारे जब हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जी वो लोग भाग लेते हैं ना, इतनी खुशी होती है। कभी छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, कभी कहानी सुनाते हैं, कभी गीत गाते हैं, तो यही तो यही जिंदगी है।
0: अगर आप खुश रखने के लिए
1: अगर आप ऐसा जियेंगे ना, अगर आपको 65 साल तक जीना था तो आप 80 साल तक जिएंगे, क्योंकि आपने अपना ये जो लाइफ स्टाइल है उसको बदल कर आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं,
0: आत्मविश्वास
1: अगर उसको आप आत्मविश्वास को दृढ़ता से लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर जैसे ये जो आशा निराशा, निराशा आप मत रखिए, ना आशा रखिए ना निराशा रखिए। आपने अपना कर्तव्य निभाया है ना, मगर आप बच्चों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते।
0: और बच्चे लोग जस्ती हई बोलेला कि हमने के समय नहीं मिलेला, हमने के नहीं सकब सब इस पर कुछ बोल पापा जी।
2: हम एक बात बोला, सबको यहाँ 24 घंटा है, कोई यहाँ एक मिनट जस्ती नहीं, एक मिनट कमती नहीं। हम नहीं बोला था कि श्रवण कुमार जैसे उनका किस्सा रामायण में उसे जिए के, और श्रवण कुमार जी के उनका फोटो सब पहले के घर में सभी घर में था, वो कैसे दैट इज़ अ आइडियल, कैसे माता पिता के का सेवा करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी ये मेरे पर निर्भर है, मैं एक बेटा हूँ या बेटी हूँ या दामाद हूँ, मुझे थोड़ा सा समय निकाल कर उनको जाकर देखना चाहिए, सो दैट यू आर कनेक्टेड। ये कनेक्शन होगा तो वो खुश रहेंगे। ये एक देखिए हमारे जो वैल्यूज

0: सिस्टम है, जो संस्कार है, ये बदलता नहीं समय से। हम हमेशा कहता, मैं हमेशा कहता हूँ, वैल्यू सिस्टम मतलब मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यू कैन नॉट इरेज दिस, ये सत्य है। यस, और भी एक सत्य है कि उनको बहुत से प्रेशर है अचीव करने का, क्योंकि बिना कुछ किए हुए कुछ नहीं मिलता है जीवन में। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, जैसे बहन जी ने कहा अभी कि आपने बहुत एफर्ट किए, वो हार्ड वर्क किए और घर बनाए, गाड़ी खरीदे, तो उसका उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आप में उतना संतुष्टता लाना चाहिए। और बच्चों का भी, बच्चों लोगों का भी, उनको भी संतुष्टता लाना चाहिए, उनको भी संतुष्ट होना चाहिए पेरेंट्स से। दे कैन नॉट कंप्लेन कि ये नहीं किया मेरे पिताजी ने, आप कीजिए, आप जो प्रोफेशनल है या आप काम करते हैं, आपके समय है अभी, आप तो जवान है, तो आप भी कुछ कीजिए। अगर दोनों के साथ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
1: तो अगर हम लोग कहेंगे कि हम बच्चों के कर्तव्य क्या है, बच्चों के कर्तव्य तो बहुत है। उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब माता पिता ने आपको जन्म दिए और उन लोगों उन्होंने दुख सह के, कष्ट सह के आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी की, बड़े बड़े अवधि पर आपको बिठाया, तो कम से कम आपका कर्तव्य देखिए। ये छोटी सी बात लोग बच्चे नहीं सोचते कभी कभी है कि उन लोगों को तो करना ही था, उन लोगों का कर्तव्य था करना। नहीं, कितने ऐसे परिवार होते हैं जो अन्य कौम के लोग में होते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते भी नहीं है। तो हम हिंदुओं में ये बात है, कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको किसी अच्छे औहदे पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर माता पिता ने आपके लिए कुछ नहीं किया होता तो आप कहीं पर लेबरर होते या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे होते, मगर यहाँ पर बन जाता है अधिकार जमाने से पहले आपको अपना कर्तव्य निभाना है। और आपका कर्तव्य क्या बनता है कि कम से कम आप उन छोटे समय, उस समय के बारे में याद करें जब आपके परिवार ने इतना कष्ट झेलकर, आपको पता है भाई जी पहले ज़माने में कितने कष्ट झेलकर वो लोग काम करते थे, जाकर धूप में काम करते थे, कितनी कठिनाइयों के साथ एक छोटा मकान बनाते थे, बच्चों को सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे, ताकि इसलिए तो आप देखेंगे आज हमारे देश में इतने सारे वकील हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे अध्यापक हैं, ये सब है। तो अगर आप लोगों को ये पढ़ाई या एजुकेशन नहीं दिए जाते तो वहाँ पर नहीं होते। तो कम से कम इतना तो सोच लीजिए, अगर ये मेरे माता पिता नहीं करते ये सब मेरे लिए, तो मैं आज कहाँ पे होता। तो अब मेरा कर्तव्य बन जाता, मेरा धर्म बन जाता है। ये तो हमें, ये जो होता है ना संस्कार हमारा, अगर हम संस्कारिक है, अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें माता पिता ने संस्कारिक बनाया है, तो इतना तो हमें सोचना चाहिए कम से कम मैं जाकर देखूँ मेरे माता पिता किस अवस्था में जी रहे हैं, उन लोगों की किस चीज़ की कमी है। जब हम कहते हैं चीज़ों की कमी, ये ज़रूरी नहीं कि पैसों की कमी। अगर हमारे बच्चे आकर वो जो सम्मान चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, रिस्पेक्ट चाहते हैं ठीक तरह से। आजकल बच्चे कभी आपसे माता पिता से बात करते हैं ना, माता पिता खुद डर जाते हैं आकर, जैसे बहुत गलत तरीके से, हाँ आपको ये करना चाहिए, नहीं प्यार से कहते। कभी मैं इसको कहते हैं बच्चा बुजुर्ग जो है बच्चा बन जाता है, नहीं बच्चा नहीं बन जाता, मगर वो इस प्यार प्रेम के प्यासे होते हैं। दे वांट लाइक, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आकर दो मिनट के लिए कुछ प्यार की बातें करें। या देखिए ये ज़रूरी है, हम बैठकर ये अगर मैं मांग करूंगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उनके बच्चे आकर वे अपने बुजुर्ग जो होते हैं अपने बच्चों को अपनी पुरानी कहानियां सुनाएं, बीती बातों की जो कहानियां, कैसे उन्होंने कष्ट झेलकर या बचपन में कैसे खेलते थे, किन किन चीज़ों के इसके साथ खेलते थे, किस प्रकार से बैठना उठना, अब ये ज़रूरी है। जोक सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, बड़े को हंसाओ, और बड़ों का हंसना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना लाफ्टर द बेस्ट थेरेपी है। अगर आप बैठकर बच्चों को, या ऐसा भी कर सकते हैं, कहते हैं कि आप लोग खाना मत बनाओ, हम बनाकर घर से लाएंगे, आप साथ बैठकर खाएंगे, या आज गाड़ी में सभी आ जाओ, गाड़ी में हम जाते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, तो उन लोगों को महसूस कराना चाहिए कि दे आर स्टिल अलाइव, दे अभी जिंदा है। और बच्चों को ये महसूस कराना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों को कि हम आप लोगों के साथ है, सरकार है, कोई भी है, समाज है, मगर वी आर योर किड्स, हम आपके

बच्चे हैं, आपने हमें जन्म दिया तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं आप लोगों ने क्या किया, तो ये हम उसको वैसे उसको लौटा तो नहीं सकते ना, जो कुछ उन्होंने अपना अपना जो कुछ किया है कर्तव्य उसको लौटा नहीं सकते, मगर कम से कम मैं 100% नहीं कहूँगी, 10

0: कि वो लोग भी परेशान होते हैं कभी कभी अपने घर में, वो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन जाकर के अपने बुजुर्ग माता पिता को ना बताएं, लेकिन उनके साथ खुशहाल मतलब समय बिताएं, जैसे खाना, जैसे अभी अनीता जी ने बताया, आपकी क्या राय है?
1: ओ सही है, देखिए जीवन बहुत अनमोल है सभी के लिए, पैसा कमाना चाहिए लेकिन ये जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर कोई बुज़ुर्ग को देखेंगे तो उनके देखेंगे उनका शरीर पुराना हो गया है, ओल्ड बॉडी, लेकिन उनमें कितना एक्सपीरियंस है,
0: वही अनुभव,
1: कितना अनुभव है जो ये जवानों को उनके फ़ायदा के लिए वो जी सकते हैं, वो सब एक्सपीरियंस से, वो सब एडवाइस से वो लेकर कितना अच्छा से जी सकते हैं। तो ये जवान लोग सोचते नहीं हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है बुजुर्गों का कब आएगा, वो जब उनके साथ रहेंगे, जब उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ निकलेंगे, उनके साथ वो पोताब रख कर एक कुएं में बातचीत करेंगे, तब पता चलेगा कि ये उनका क्या वैल्यू है, असली वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज गेन ओनली थ्रू एक्शंस एंड टाइम, ये मगाजे में नहीं मिलता है ये एक्सपीरियंस। और ये जो वैल्यू सिस्टम है, और मुझे ऐसा मेरा अनुभव है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जब छोटा रहते हैं दादा दादी से बहुत जल्दी कुछ सीखते हैं, उनको बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको सब कुछ याद आता है, दादे कैसे थे, दादी कैसे थे, सब कुछ याद होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनेक्शन, ये जो एक्सपीरियंस है, लिविंग एक्सपीरियंस। लेकिन जब जैसे मैं कह रहा हूँ, द फ्यूचर लाइज इन एक्सटेंडेड फैमिली, हम वापस वो जाएंगे, उसमें साथ में रहेंगे, ये दैट इज़ अ फ्यूचर, क्योंकि अपना इकोनॉमी बदल जाएगा, वो टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगा, वो पूरा दुनिया का वो वातावरण भी बदल रहा है।
0: इस तरह की तस्वीर जो आप बोल रहे हैं, अगर सचमुच हमारे सामने आ जाए, ये जो पहले की तरह
1: चाहिए, और एक बात है बहन जी, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी यूरोप में लगभग 80 तक जी रहे हैं वो लोग, शायद 90 तक चला जाएगा, और 2080 तक ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग ज़्यादा होंगे बच्चे से। तो एकदम कितना होम्स
0: ये रहा है,
1: और एक इच्छा क्या होता है एक बुजुर्ग का बुढ़ापा समय में, होम में जाने का नहीं, घर में रहने का, अपने घर में वो मरने का।
0: ये तो सच बात है, हम लोग जाने लगा कि बुजुर्ग के जो संख्या दिन ब दिन
1: बढ़
0: लोग की सुविधा खातिर कैसे उन लोग के मतलब कायम रखेगी, यही सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमारे बच्चे भी ज्यादा मतलब जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन उन लोगों का साथ भी होना चाहिए,
2: बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर किसी ने कहा है, बहुत सुंदर बात है, कहते हैं बुढ़ापा जो है थमने का नाम नहीं है, बुढ़ापा जो है थमने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का एक नया और सम्मानजनक अध्याय है। है ना, क्योंकि ये सम्मान की जो बात है, अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक न एक दिन तो हमें ये बात समझनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारे जवानों पर या हमारे, देखिए क्या होता है कि आजकल हम कहते हैं सिर्फ हम ही मोबाइल चला, मैं नहीं, जो जवान होते हैं वो कहते हैं सिर्फ वही मोबाइल चला सकते हैं वही, मगर हमें जहाँ तक हो सके अपने बड़े बुज़ुर्गों को सिखाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। क्योंकि आप ये जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या पता नहीं कितने कितने ऐसे फ़ोन है, कम से कम उन लोगों को सिखा दीजिए, ताकि उनको लोगों को महसूस ना हो कि मैं तो बेकार आदमी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, है ना, क्योंकि ये तो आधुनिक चीज़ें हैं,
0: आधुनिक में हम जी रहे
2: हैं। तो कम से कम हमारे बच्चों को कम से कम समय दे। आप कभी ऐसा होता है आपके आपके आपके जन्मदिन पर मैं आपको एक मोबाइल दूंगा, ठीक है, मोबाइल तो मिल गया, अगर मोबाइल
0: सिखाना चाहिए, सिखाना कैसे चाहिए,
2: क्योंकि हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये सिर्फ नहीं, कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे आपने भाई जी बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमारा जो अनुभव है, बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, वो इतने अनुभवी होते हैं कि अपने बच्चों को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया बचपन में, बुढ़ापे में अभी सिखा रहे। तो ये जो कम से कम बच्चों को भी अपने बुजुर्गों को

0: भी सिखाना चाहिए। ये ये ये तो ना एक दोनों तरफ का ये जो देना है, आप भी दो वे भी दे, तो जीवन तो बहुत ही सुंदर बन जाएगा।
1: क्योंकि उन लोगों को भी सिखाना चाहिए कि मोबाइल हम लोग ही
0: आज का जीवन में ये तो कंपल्सरी बन गया है जैसे।
2: और सिर्फ मोबाइल नहीं, कैसे यूट्यूब पर जाना
1: लाइन पे कोई श्रोता है नहीं, तो चलिए अपनी इस चर्चा को हम जारी रखते हैं।
2: मैं क्या कह रहा था, कैसे बोलते हैं वो एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड है, कैसे बोलते हैं इसको, जेरियाट्री। जेरियाट्रिक्स कहते हैं कि एक सीक्रेट, मतलब बुढ़ापा में जीने का एक सीक्रेट है, कुछ नया सीखो। संगीत सीखो, एक नया भाषा सीखो, एक नया एक्सरसाइज सीखो, कोई गाना सीखो, ओके, कुछ बजाना सीखो, कुछ नया साइंस पढ़ना सीखो, जो कि आपने जवानी में खरीद कर पुस्तक रखा है उसको जाकर खोलो, पढ़ो उसको,
0: व्यस्त रहो,
2: यू विल फील यंग। एक दो चीज़ है, एक मतलब क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनिकल एज, जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कितना एज है आपका, 60 या 55 या 65, और मेंटल एज, दिमाग का जो जो तो वो कितना है, दिमाग में आपका कैसे
0: स्टिल
2: 20, तो वो उस पर आपका जीवन बहुत निर्भर होगा। आप सोचें कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे पास
1: नहीं, ये बिल्कुल धारणा, ये धारणा उसको निकालना चाहिए दिमाग।
2: तो मेंटल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जेरियाट्रिस्ट वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर, वो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू।
0: इट्स वेरी ट्रू, बहुत सच बात है।
2: मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत सभी लोग जाते हैं काएफ से, मैं उसका पब्लिसिटी तो नहीं कर रहा हूँ, वो जो बिजनेसमैन, वो जो उन्होंने वो कंपनी खोला 67 इयर्स एज में,
1: तो है
2: एट द एज ऑफ 67।
1: अभी एक श्रोता को जरा सुन लेते हैं। हेलो
3: आपको शुभ नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
3: देखिए आप लोग बुढ़ापा पर बात कर रही हैं ना, तो मैं एक आयाम पे बात करूं।
1: बताइए। और वैसे बहुत वक्त नहीं है नवीन जी, आप
3: देखिए ये बुढ़ापे को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हम उन बिंदुओं पर विचार करें जिनसे हमारा बुढ़ापा भारी न हो। हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा कैसे आनंद, स्वस्थ और शांति से ओतप्रोत हो। जिस प्रकार मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार बुढ़ापा भी एक सत्य है। अर्थात बुढ़ापा या वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसे हर व्यक्ति को एक दिन गुजरना ही पड़ता है। बुढ़ापे में हमारा मन, इंद्रिय और बुद्धि ये सब बाधा रहित बनी रहती है। हमारे विचार सत्कर्म की ओर चले तो हमारा बुढ़ापा सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद
1: आपको
3: अनुराधा जी, और मेहमानों को भी धन्यवाद। शुभ दिवस, नमस्कार।
1: शुभ दिवस आपको भी, और आपके जो विचार एकदम ही सराहनीय है, और हमारे समय तो बहुत जल्दी ही जा रही है। एक और श्रोता है, तो चलिए आप अंत में हमें बताएं दो शब्द, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आपका क्या कहना है?
0: मैं तो यही संदेश के रूप में देना चाहूँगी कि दोनों तरफों पर ये बात है, लागू है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है उन लोगों को और समझदार बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा शुरू में, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जो कुछ आपका कर्तव्य था, आपको ये सोचना है कल क्या हुआ था, आप इसके बारे में मत सोचिए। कल क्या होने वाला है इसके बारे में मत सोचिए। आज जो है सबसे सार्थक बात है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, आज जो अभी आप जी रहे हैं, तो अगर इस बात को आप सोचकर आगे बढ़ेंगे तभी आप बहुत ही सुकून से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और ये है, अगर आप प्यार चाहते हैं तो आप प्यार बांटिए, जो कुछ हम चाहते हैं अगर उसको हम ना बांटें, अब आप अपने कोने में बैठे रहेंगे किसी से बात

0: बात ना करेंगे किसी बात, ये हंसी मजाक करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ये आपके लिए, आप अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए, ठीक रखने के लिए आप ये सब करेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि देख, जहाँ तक मेरे जो बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, हम आप लोगों से बहुत ही प्यार करते हैं, और हमारे जो जवान हमें सुन रहे हैं, हम आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि आपने, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ठीक तरह से जिए, और जितनी प्रगति आपके बड़े बुजुर्गों ने किया उतनी प्रगति आप लोग भी करें।
1: हाँ जी, मुझे चार बात करना है,
0: जल्दी।
1: कैसी, अभी बच्चे के बारे में हम बात किए, मैं कहूँगा ये बुजुर्ग लोगों को भी बच्चों की बात कभी कभी सुनना चाहिए,
2: बिल्कुल,
1: साथ में रहने के लिए। एक दूसरी बात, ये अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाई लेना चाहिए रेगुलरली। तीसरी बात, अभी मोबाइल फ़ोन का समय है, ये लिपोक है, तो कोई फ़ोन करेंगे पूछेंगे तुम्हारा नंबर क्या है, अकाउंट नंबर
0: मत देना।
1: अकाउंट नंबर, तुम्हारा पासकोड,
2: आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने बुजुर्ग के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, यही बात हम कहेंगे। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम देंगे। श्रीमती अनीता गोविंद जी और श्री हेमंत राम गोविंद जी, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, इतने अच्छा से आपने इतना बड़ा बड़ा विचार दिया।
0: आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपको अनुराधा जी, आपने हमें मौका दिया,
2: धन्यवाद। फैजन उरूसा और रजनीश के सहयोग से, और साथ में धर्म जी ने भी हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें रजनी से आपको नमस्कार
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं मॉरिशस और राष्ट्रसंघ विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग का जायजा ले रही है 2024-2028 सहयोग कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बालाक्लावा के मैरिटाइम होटल में लगी इसकी अध्यक्षता मंत्री रितेश रामफर और लीजा सिंह ने की दोनों ही पक्षों का मानना है कि नई चुनौतियों का सामना कर पाने के वास्ते हमारी साझेदारी बरकरार रखनी चाहिए क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति नहीं आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित जेएनजे सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया मंत्री अशोक सुभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता के महत्व पर जोर दिया इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई अंतरिम प्रधानमंत्री आज्ञा नावा मागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान मजबूत करने की सरकारी कटिबद्धता व्यक्त की कर्नाटक एमबीसी न्यूज के रेडियो विभाग को दिए गए एक बयान में व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्यूएन ने एसटीसी की प्रशासनिक परिषद के रद्द किए जाने का इरादा व्यक्त किया शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सामने इस पर चर्चा की जाएगी मंत्री के अनुसार एसटीसी की जिम्मेदारी में कुछ पदार्थों के स्टॉक से वे संतुष्ट

0: स्पष्ट नहीं। वाकवा स्थित एसएमएफ जिमखाना आज सुबह कार्रवाई स्थल में तब्दील। असल में वहां पर हस्तक्षेप करने वाले कुत्ते, राहत कार्रवाइयां और सशस्त्र गुट को नाकाम करने की कार्रवाइयां चलाई गई। मॉरिशस और रेनियन टापू की ताकतों के बीच सहयोग के अंतर्गत एक सिमुलेशन कार्रवाई का आयोजन किया गया। विदेश समाचारों में तमिलनाडु के 90 बांधों में पानी का भंडार उनकी कुल क्षमता के लगभग 34% तक गिर गया है। लगातार गर्मी के कारण 63 जलाशयों में पानी उनकी क्षमता के 1/4 से भी कम रह गया, जिससे कि सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। बीते दिन दुबई से तेलावी जा रही दुबई फ्लाई की फ्लाइट में भारत के बहादुर पायलट स्मित मचार पर को पायलट ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में वह पूरी तरह से घायल हो गए। उनका इलाज सऊदी अरब में तबुक के अस्पताल में चल रहा था। दुबई फ्लाई के पायलट स्मित मचार को सऊदी अरब के तबुक अस्पताल से दुबई एयरलिफ्ट किया गया है, जहां को पायलट के हमले के बाद उनका इलाज चल रहा था। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड पायुत में 50 साल के 50 years old के श्री आशीष संपत जो मौदी नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके भाई श्री सतीश संपत के घर रॉयल रोड पायुत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बांगलौर सुल्फेगिनो के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: On MBC Play and MBC.MU. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: MBC TV programs ki jhalkiyan.
5: Mata pita ka karm hota hai bachchon ko palna. Aur bachchon ka dharm hota hai maa baap ko sambhalna.
6: Humne apna pindadan kar diya.
7: Apne hi dete.
6: Rone ke liye koi nahi the. खुद रो दिए।
7: यादों के झरोखों से अक्सर
8: गुरुवार 1 अक्टूबर को एमबीसी वन पर रात के 8:20 पर हिंदी फीचर फिल्म वनवास 2024 की मूवी नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा पर फिल्माई गई वर्ल्ड एल्डर्स डे के दिन पर हिंदी फीचर फिल्म वनवास।

0: से मिले दिल।
1: हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, 4:14 हो चुके हैं और दिन की भागदौड़ के बीच में एक थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लीजिए। अगले एक घंटे हम चलाने वाले हैं 90s के खूबसूरत गीत और कुछ प्यारी सी बातें करेंगे। आपके मैसेजेस का इंतज़ार होगा 5250-6200 पर। और ये प्रोग्राम बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी रखा हुआ है दिल से मिले दिल। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को, 90s को जो प्यार करता है।
2: RM3 Radio.

0: से मिले दिल।
1: 4:21 हो चुके हैं, आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में नज़र के सामने जिगर के पास। सच बात है, वो ज़माना एक ऐसा होता था जब 90s का टाइम आता था और हम कई बार बहुत सारी बातें अपने दिल में रखते थे और किसी के लिए एक अलग सी कहानी अपने दिल में सोचते रहते थे, पर फिर जब वो सामने आते थे और उनकी स्माइल देखते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। यही तो बस मासूमियत थी 90s के प्यार की, और जहाँ पे एहसास तो बहुत थे पर बोला नहीं जाता था, और वहाँ पर जब बोला जाता था तब वो कहते थे कि अरे अभी तो थोड़ा तुम जवान नहीं हो, अभी तुम चुप रहो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब

0: से मत जियो, हमारी सोच के हिसाब से जियो। पर फिर भी कई ऐसे जवान दिल होते थे जो धड़कते थे।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चार बज के 29 मिनट हो चुके हैं। अगर आप अपने किसी खास इंसान से थोड़ा सा नाराज़ हैं तो ज़्यादा देर तक मत बात को खींचेगा। थोड़ा रुकना मनाना ज़रूरी बनता है, क्योंकि आखिर प्यार है और प्यार तो सबको चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़िंदगी में ये है कि अगर कोई आपको प्यार करने वाला मिल गया है तो बस प्यार करो।

0: से मिले दिल।
1: 4:37 हो चुके हैं और सच ही तो कहा है, तुम मानो या ना मानो हर किसी को प्यार की ज़रूरत है। और सच बात है कि अगर किसी की ज़िंदगी में सच्चा प्यार आ जाए और ज़िंदगी में बहुत कुछ उनसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए और फिर एहसास हो जाए कि वो हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो बस फिर तो खिंचाई भी होती है, प्यार भी होता है और कुछ कभी कभी नोकझोंक भी होती है और फिर भी एहसास होता है, अरे नहीं नहीं ये तो सब पुरानी बातें हो गई, ऐसे ही ज़िंदगी बढ़ती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। बहुत ही छोटी ज़िंदगी है, मुस्कुराते रहना और हंसते रहना यही सबसे बड़ी इस ज़िंदगी की खासियत है। तो हम तो यही कहेंगे, इस समय आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बस आराम से ड्राइव कीजिए, एंजॉय कीजिए 90s के गानों को।
2: RM3 रेडियो।

0: से मिले दिल।
1: 4:43 हो चुके हैं दोस्तों, ये जो अगला गाना आप सुनेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाना सबके दिलों की धड़कन आज भी है। 90s में ये गाना आया था, आपको बताऊं तो हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गाने को गाया था, और मुझे पता तो चल ही गया होगा और आपको भी एहसास हो गया होगा ये कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। जी हम बात कर रहे हैं बॉम्बे मूवी की, बहुत ही प्यारा गाना। कहते हैं कि जहाँ पे समुद्र हो और जहाँ पे हवाएं तेज़ चल रही हो और वहाँ ये गाना चल जाए तो कहते हैं सांसें थमने से लग जाती हैं, और ये सच बात है। इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को आप सुन पाएंगे इस समय पर, अपने दिल को थाम के रखिएगा।
0: RM3 Radio.

0: से मिले दिल।
1: 4:51 हो चुके हैं दोस्तों, दिल से मिले दिल में बस इतना ही। उम्मीद है 90s के इन गीतों ने आपकी शाम थोड़ी सी खूबसूरत बनाई होगी। मैं थी आपके साथ पूनम, और अपनों का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नमस्कार पर। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा संजय जी का, आप उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। और जहाँ पे भी अभी घर पर हैं तो आप क्या घर पर आराम से रहिएगा, और अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बस घर आराम से पहुँचिएगा। मेरी तरफ से बाय बाय।
2: RM3 Radio.

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: RM3 Radio. MBC TV programs की झलकी।
2: माता पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म होता है माँ बाप को संभालना।
3: हमने अपना पिंडदान कर दिया,
4: अपने ही देते।
3: रोने के लिए कोई नहीं थे, खुद रो दिए।
4: यादों के झरोखों से अक्सर।
1: गुरुवार 1 अक्टूबर को MBC 1 पर रात के 8:20 पर हिंदी फीचर फिल्म वनवास 2024 की मूवी नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा पर फिल्माई गई। वर्ल्ड एल्डर्स डे के दिन पर हिंदी फीचर फिल्म वनवास।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: इस समय शाम के 5 बज रहे हैं।
5: राम रसधारा, रसधारा।
4: ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। जय सियाराम, जय जय हनुमान। सभी श्रोता भाई बहनों का स्वागत है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हमारे हफ्तावार सत्संग रामरस धारा में। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं 3 बहनें और 1 भाई, जिनका हम हृदय से अभिवादन करते हैं। माला जी, सुनीता जी, सोनी जी और भाई धीरज जी, जय सियाराम।
6: जय सियाराम।
4: आज के सत्संग का श्री गणेश करते हैं श्री राम स्तुति, श्री हनुमान स्तुति और सुमेधनी के साथ। जय सियाराम,
6: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: जय सिया राम श्रोताओ, आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रही है, इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली। सो आज के राम रसधारा सत्संग के जरिए हम देखेंगे किस तरह से रामचरितमानस वृद्धजनों का आदर सम्मान करता है। सबसे पहले जब 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जब रामचरितमानस की रचना शुरू की, तब वे खुद 60 पार कर चुके थे और उस उम्र में आकर 2 साल 7 मास और 26 दिनों में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करना, जो आज करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत भारी बात थी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। जय गुरुदेव, जय जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: रामचरितमानस हमको ये सिखाता है कि माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। बालकांड दोहा 205 चौपाई 4 में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं, बहनों और भाई से हम सुनते हैं। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: प्रातः काल उठ के न रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अर्थात हर रोज प्रातःकाल उठकर श्री राम अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में अपनी माथा टिकते थे। ये चौपाई आज की पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि डिसिप्लिन और विजडम, अनुशासन और ज्ञान, विनम्रता और अपने से बड़े लोगों का आदर करने से मिलता है। जय सियाराम।

0: रसधारा
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम सत्संग राम रसधारा हर गुरुवार को 5 से लेकर 6 बजे तक। श्रोताओं, श्री राम जी का वनवास स्वीकारना अपने आप में अपने वृद्ध पिता के वचनों का पालन है। श्री राम जी का वनवास स्वीकारना इस बात का प्रमाण है कि वह अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा अपने पिता के वचनों का मोल रखते थे। श्री रामचंद्र जी पूरे रामचरितमानस में अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, अपितु वो हर वक्त गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि और महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन के अभिलाषी रहते हैं। दोहा 208 बालकांड।
2: जय सियाराम।

0: आधारित प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं जहां पर वृद्धजनों की भूमिका अहम रही है। सबसे पहले गिरिराज जटायु। गिरिराज जटायु कौन थे? जटायु जी साहस और बलिदान का प्रतीक माने जाते हैं। जटायु जी सूर्यदेव के सारथी अरुणा के बेटे माने जाते हैं। इस नाते वे गरुड़ महाराज के भतीजे हुए। उनका बड़ा भाई संपाति। जटायु जी राजा दशरथ के प्रिय मित्र थे और रामचरित मानस के अरण्य कांड में वे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की रक्षा एवं सेवा का प्रण लेते हैं। रावण द्वारा सीता हरण के पश्चात वो गिरिराज जटायु थे जिन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था के बावजूद भी रावण का सामना किया। यहाँ तक कि रावण को चंद्रहस्त्र का उपयोग करना पड़ा जटायु के पंख काटने के लिए, नहीं तो रावण के लिए माता सीता को लेकर लंका जाना नामुमकिन था। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: बिन पंख के घायल जटायु अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक कि वो जरूरी सूचना श्री रामचंद्र जी को दे न पाए। सीता मां को हरने वाले कोई और नहीं रावण ही थे। एक और उल्लेखनीय बात ये है कि श्री राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ की अंतिम संस्कार तो नहीं किया, लेकिन जब श्री राम जी ने भ्राता लक्ष्मण को आदेश दिया जटायु की इलाज के लिए प्रबंध किया जाए तो जटायु जी ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि इस बात से बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि अंतिम समय में वो श्री राम जी के गोद में हो और श्री राम जी ने आदर सत्कार पूर्वक जटायु जी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। वीर जटायु की जय हो, जय जय सियाराम।

0: रामरसधारा। जी श्रोताओं, आज के रामरसधारा सत्संग के जरिए हम देख रहे हैं किस तरह से रामचरितमानस वृद्ध जनों का आदर सम्मान करता है। श्रोताओं, रामचरितमानस के सुंदरकांड की शुरुआत में वो जामवत जीत है जिन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया उनकी भूली शक्ति। सुनते हैं वही चौपाई भाई और बहनों की वाणी में। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

जय सियाराम। जामवंत के बचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहे पर खेऊ तुम भाई, सब दुख कंड मूल फल खाई। हनुमान जी ने जो भी पराक्रम सुंदरकांड में दिखाई, वो श्री जामवंत जी से प्रेरित होकर। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: रसधारा।
1: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के उपलक्ष पर ये हमारा राम रसधारा सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। हमारे बड़े लोगों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही हम धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। स्टूडियो में उपस्थित तीन बहनों को और एक भाई को कोटि कोटि धन्यवाद उनकी उपस्थिति और उनके सहयोग के लिए। अगला राम रसधारा अगले गुरुवार की शाम 5 बजे। तब तक श्री राम जी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अंत में शांतिपात उपस्थित भक्तजनों की वाणी में जय सिया राम, जय जय हनुमान,
2: जय सिया राम।

0: here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। आज पहला अक्टूबर है, एगो बहुत बड़ा दिन है हमने के देश के, हमने के इस दुनिया के चलता फिरता आर्काइव्स लोग खातिर, और हमने के चलता फिरता आर्शिव लाइब्रेरी पुस्तकालय के रही सिवाय हमने के बुजुर्ग लोग के। पहला अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनावल जाला। हमने के बुजुर्ग हमने के घर परिवार समाज के पहला पुस्तक हवन जा। ये पुस्तक के हर एगो पन्ना पर अनुभव के कहानी लिखल गल बा। ये बरिस 2026 के ई दिन खातिर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सुंदर एगो विषय रखले बा, और वह लंबा आयु लंबा जीवन खातिर व्यवस्था और फिर से विचार। आज इंसान आगे के समय से और जस्ती लंबा समय तक जियत हवन सा। 2050 तक दुनिया में 60 बरिस से ऊपरे होला लोग की संख्या 2 करोड़ से भी जस्ती हो जाए। ये एगो बड़ा उपलब्धि है, लेकिन एगो बड़ा सवाल भी बाय कर संगे संगे। सवाल ये है कि हमने के व्यवस्था, हमने के सिस्टम, हमने के सेहत, हमने के नौकरी, हमने के पेंशन, हमने के घर का ये लंबा जीवन खातिर ये सब तैयार हवन सा। ये बरिस के थीम यही सिखावेला कि बुढ़ापा बोझ नहीं है, बुढ़ापा एगो अवसर है, जरूरत बा खाली सोच के बदले के। हमने के दादा दादी नाना नानी लोग के खाली दवाई के ही नहीं, बल्कि हमने के सम्मान के जरूरत बा। ये लोग के खाली देखभाल नहीं, भागीदारी चाहेला। उ लोग के एगो कोना में नहीं, फैसला के बीच में चाहे जगह देवे के। तो आज वृद्ध जन दिवस पर आवा वादा करी जा कि अपन बुजुर्ग के अकेला नहीं छोड़ब जा। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के खाली उ लोग के संगे बैठब जा, उ लोग के सुनब जा। कहे कि जब तक हमने के बुजुर्ग मुस्कुराइन जा, तब तक हमने के काल सुरक्षित रही। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। सब कोई के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

बुजुर्गों नई पीढ़ी के बीच फासले को घटाना समाज की भलाई तथा पारिवारिक कल्याण के लिए अहम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर फिनिक्स में अंतरिम प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक बार फिर से हमारे बुजुर्गों की अहमियत पर जोर डाला गया। ब्रेस्ट कैंसर पर आगाही फैलाने और अर्ली स्क्रीनिंग के लिए महिलाओं की हिम्मत बढ़ाने के वास्ते आज एक नए ऐप को आम किया गया, पिंक पल्स, पिंक अक्टूबर के अभियानों के सिलसिले में जारी किया गया। शागोज के सिलसिले में मॉरिशस और यूके के बीच तय समझौते के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री ने बयान की, ये समझौता अमेरिका के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तेल अवीव और दुबई की परवाज के दौरान पायलटों के झगड़े की जांच शुरू, दोनों मंजिलों के बीच फ्लाई दुबई की उड़ानों पर रोक। नमस्कार, एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित जेएनजे सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया। मंत्री अशोक सुभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता को महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नवामागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान मजबूत करने की सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके मद्देनजर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार संबंधी कार्यों में प्रगति हो रही है। इन सुधारों का मकसद है हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना और साथ में उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाने में सुविधा प्रदान करना। अनाबेल वर्बिया की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान।

0: अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने के लिए देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ आए हुए थे। इस दिन रिथिंकिंग सिस्टम्स फॉर लॉन्गर लाइव्स यानी लंबी आयु के लिए प्रणालियों पर फिर से गौर करने के विषय पर विचार किया गया। नई पीढ़ियों और वृद्ध लोगों के बीच दूरी कम करने के बारे में भी विचार किया गया।
1: Mais vu comment dire, moi-même ou mes enfants pas avec moi, je dehors, je ne restais. Ben, c'est comme ça, nous avons contact pour la nouvelle technologie.
2: Moi, je trouvais qu'il faisait faire la loi un petit peu plus sévère, lorsqu'un jeune qui peut en acte, une vieille personne.
3: 500 personnes âgées, pas si pour une âgée, mais 500 âgées, personnes âgées, pas capable de bouger.
4: On a trois enfants, on est très rapide.
0: इस अवसर पर देश के निर्माण में वृद्ध लोगों के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। सीनियर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष नागाइडू गाबा नागाइडू कहते हैं,
5: Nous, bonnes personnes âgées, nous avons un patrimoine qui n'est pas trouvé dans aucun musée. Lié avec nous. Nous, l'expérience. Nous, l'intelligence. Nous, bons souvenirs. Et valeurs et nos histoires. Nous, l'histoire. Ainsi donc, nous avons le devoir de transmettre ce patrimoine à la génération montante.
0: वृद्ध लोगों की एक विरासत है जो किसी संग्रहालय में नहीं मिलता। वो हमारे पास है, हमारे अनुभव, ज्ञान, यादें और मूल्य, हमारा इतिहास। हमारा कर्तव्य है कि इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मॉरिशस में पारंपरिक परिवार की संरचना बदल रही है, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, जबकि नई पीढ़ियां ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माहौल में बड़े हो रहे हैं। जूनियर मंत्री कुगन पगापेन कहते हैं, हाल में की गई खोज से पता चलता है कि परिवार में बुजुर्ग लोगों की कमी हमारे बच्चों के व्यवहार को बिगाड़ देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैबलेट्स किसी बुजुर्ग के प्रेम और धैर्य की जगह नहीं ले सकते। समाज सुरक्षा मंत्री ने कार्य के गठन पर विचार करने के बारे में बात की। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को बुजुर्ग माता पिता को सहारा देते हुए अपने पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने का मौका देना है। मंत्री अशोक सुभों कहते हैं,
6: Nous appelons aujourd'hui dialogue et l'initiative entre différentes générations.
0: आज हम विभिन्न पीढ़ियों के बीच बातचीत शुरू कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय बातचीत। हमें अर्थव्यवस्था पर फिर से गौर करना चाहिए। मैं 5 दिन में 40 घंटे काम करने के पक्ष में हूँ, ताकि नौजवान लोग घर के वृद्ध लोगों की देखभाल कर सके और अपने बच्चों का भी। अन्य देशों में पाए जाने वाले सोलिडारिटी लीव्स प्रस्तावित कर रहा हूँ, ताकि वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए छुट्टी मिल सके। अंतरिम प्रधानमंत्री ने पीढ़ियों के बीच पुल बनाने के महत्व पर जोर दिया। आहिया नावामावे ने वृद्ध लोगों के पक्ष में उठाए गए कदमों के बारे में बात की। सरकार का उद्देश्य है मॉरिशस में हर एक वृद्ध व्यक्ति को सम्मान के साथ समाज में अपनी जगह बनाए रखते हुए जीने का अवसर देना।
7: Nous gouvernement peut mettre en place une réforme avec mesures concrètes pour que respect et protection ban grand du monde vienne une réalité. Nous peut avancer.
0: हमारी सरकार सुधार लागू कर रही है और ठोस कदम उठा रही है, ताकि बुजुर्ग लोगों का सम्मान और रक्षा एक सच्चाई बने। प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार ला रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए कानून में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हो उन वृद्ध लोगों के लिए जो हिंसा का शिकार होते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ या दादी नानी का पेंशन बिना उसकी अनुमति से लेता है, तो ये ज्यादती है और कानून इसे ज्यादती मानेगा। लागू किए गए कदमों के अलावा पीढ़ियों के बीच संबंध बनाए रखना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। बुजुर्गों का साथ देते हुए उनके योगदान को मान्यता देना, समाज में उन्हें एक जगह देना जरूरी है, और ये सुनिश्चित करना है कि वृद्ध होने का मतलब अकेला छोड़ देना नहीं है।
8: मॉरिशस और राष्ट्रसंघ विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग का जायजा ले रही है। 2024-2028 सहयोग कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बालाक्लावा के मैरिटाइम होटल में लगी। इसकी अध्यक्षता मंत्री रितेश रामफल और लीजा सिंह कर रहे थे। दोनों पक्षों का मानना है कि नई चुनौतियों का सामना कर पाने के लिए हमारी साझेदारी बरकरार रखनी चाहिए।
9: मॉरिशस और संयुक्त राष्ट्र के बीच कायम सहयोग प्रोग्राम के मध्य स्तर पर मॉरिशन विदेश मंत्री ने परियोजनाएं अमल में लाए जाने के सिलसिले में कई समस्याओं का उल्लेख किया। हालांकि पीपल और प्रॉस्पेरिटी वाले हिस्सों में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है, लेकिन प्लैनेट यानी पर्यावरण का पहलू चिंता का विषय बना हुआ है। एक छोटा टापू देश होने के कारण मॉरिशस काफी हद

0: तक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, जिसके लिए नई परिस्थितियों के साथ ढलना और मजबूती बढ़ाना और आवश्यक हो गया है। मंत्री रितेश रामफल कहते हैं 17 सितंबर को विश्व बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अडैप्टेशन और रेजिलियंस से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मॉरिशस को लगभग 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें राष्ट्रसंघ के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक नई राष्ट्रीय जल रणनीति की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें इस महत्वपूर्ण संसाधन के भंडारण और रिटेंशन पर खास बल दिया जाए। अन्य प्राथमिकताओं में नौजवानों के बीच ड्रग्स की समस्या से निपटना शामिल है। मॉरिशस के लिए राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि लीजा सिंह के अनुसार मॉरिशस और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी मजबूत है, लेकिन नई चुनौतियों का सामना करना भी जरूरी है। उन्होंने डिजिटल, मेडिकल और आर्थिक क्षेत्रों में हुई प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा पिछले साल हमने ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सरकार की मदद की, साथ ही हमने डिजिटल बदलाव की दिशा में संबद्ध अधिकारियों के साथ काम किया। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल रोड मैप की कार्य योजना की लॉन्चिंग में आईसीटी मंत्रालय को सहयोग प्रदान किया। इलाकाई स्तर पर हमने अन्य अफ्रीकी टापू देशों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सामग्रियों की संयुक्त खरीद के लिए जिम्मेदार एक सचिवालय मॉरिशस में कायम किया। ये संस्था करीब 35 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस पहल से वैश्विक मंडी में दवाइयां बेहतर दाम पर प्राप्त करने और इनकी नियमित आपूर्ति की गारंटी संभव होती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि मॉरिशस को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो ज्यादा कुशल और लक्षित हो और ठोस समाधान देने में सक्षम रहे, खासकर फाइनेंसिंग, समावेश और सतत विकास के मामलों में।
1: सागा उन्हों की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का रहा। सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। आज से पिंक अक्टूबर की शुरुआत हुई। ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता अभियान के लिए एबेन के हनेसी पार्क होटल में पिंक पल्स की लॉन्चिंग की गई। ये एक अहम ऐप है जो अर्ली स्क्रीनिंग के अलग अलग चरणों पर यूजरों को सहायता देता है। रिपोर्ट अंजुगान गुलाम की, विवरण आस्था गोविंद तमन।
2: Oui, bon, c'est un médecin pour guider tension avant de grossir, avant de tout ça.
3: Moi, déjà, il y a un problème qui me sentait un petit grosseur de mon sein. Ben, me fait dire assez souvent. Moi, pas trop connais, mais me sais faire lire tant que possible.
4: Me trouver un peu autant qu'il nous a checké pas nous, parce que nous pas connais à quel moment nous avons un cancer.
5: Est-ce qu'on entend parler de l'application Pink Pulse?
6: Oui, effectivement. J'ai l'application sur mon téléphone.
7: पिंक पल्स एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसे खुद अपने स्तनों की जांच को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।
8: पिंक पल्स इन कमेंसे अ ट्रावे एन कन्वर्सेशन एंड मन कमराड कुत नीट पे डिस्कुटे एंड पे ले टूट पे शेयर द बन लीडे लो क्वांटिटी कैंसर की नु पे गेन या लिल मॉरिस डायर द टू एन पोर्टेबल दस ला मे की फेन नु पास सर्विस अस आउटिल ला पुर नु क्रिए एन ऐप कुत नु कैपेबल इन्फॉर्म एंड दी मोन कमेंट फेयर ला पल्पेशन कुत जत कैपेबल फेयर ली कुत जत चाक मो Et je te login sur bande détail.
7: Pink Pulse के साथ एक नारा भी है जो लोगों का ध्यान खींचता है और खुद जांच करने का संदेश देता है।
9: T'as-tu été parce que je trouve qu'on doit vulgariser l'acte même de faire sa palpation. Il n'y a aucune connotation derrière là. Et du moins, nous avons l'habitude de connaître que t'as-tu été vis-à-vis des affaires normales. Tous les mois, une madame lui a fait sa palpation. Donc là, elle peut servir comme un calendrier, comme une alarme. कि नु कोने कि जो कि दात के लिए नु बिजफ है नु पल्पेशन।
7: हर साल महिलाओं में स्तन कैंसर के सैकड़ों नए मामले सामने आते हैं, इसलिए बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए खुद जांच करना काफी अहम है।
9: 220 डीसी पर ऑन रिलिए ओ कैंसर डू सैन एक की कैपेबल ए पेना Si tous les mois nous faisons palpation, nous veillons l'écho et nous servissons l'application. Donc la palpation, normalement, nous pourrons donner une lump, une boule. Mais ce n'est pas que ça. Le 6h30, l'application, là, vous trouvez un signe we have to look out for, comme changement de texture de la peau, et quand nous pèsons, nous têtons un liquide qui a sorti comme du sang. Et nous, la peau qui avait comme la peau d'orange. Et il y a beaucoup de signes qui sont déjà l'application. Là. Et ça, c'est un signe qui nous vient aussi guette-nous l'écho dans la glace. Quand nous trouvons un changement, parce qu'ils nous-mêmes nous connaissent les copies qu'elles nous disent.
7: Lekin Pink Pulse sirf mahilaon ke liye nahi hai. Mauritius mein har saal purushon mein bhi breast cancer ke 5 se 6 naye mamle darj kiye jate hain.
10: Au courant qu'il y a un monsieur aussi capable d'avoir un cancer du sein.
11: Monsieur, non, pas au courant.

0: quand c'est simple, on connaît, il concerne que les filles, que les dames.
1: Mais au courant et dans la presse, partout, en documentant.
2: पिंक पल्स महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जरूरी जानकारी एक ही जगह देता है। किन संकेतों और लक्षणों पर ध्यान देना है, खुद जांच कैसे करनी है और जांच केंद्र तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी इसमें दी गई है।
3: L'application est gratuite. Vous avez un scan QR code et il y a un pod directement au Google Play ou App Store, ça dépend qui portable vous êtes là. Vous downloadez et vous savez, il est bien user friendly.
2: पिंक पल्स एक छोटी सी पहल लेकिन संदेश साफ है, अपने शरीर को जानिए, बदलाव को पहचानिए और समय रहते जांच कीजिए।
4: राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल विदेश के औपचारिक मिशन पर हैं। वे टुवालु, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के आमंत्रण किए जाने के बाद टुवालु और फिजी में आयोजित पूर्व कॉप 31 बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति अगले 9 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में ओबेर हंगली अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। शागर्स द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता वापस दिलाने की कोशिश एक नए नाजुक चरण में प्रवेश कर चुका है। मई 2025 में मॉरिशस और यूके के बीच तय समझौते के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि यह समझौता अमेरिका के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इस नए विकास के मद्देनजर मिडल टेम्पल एसोसिएशन ने आज शागस मुद्दी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया ताकि मॉरिशस के स्थान को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। वाकवा स्थित एसएमएफ जिमकाना आज सुबह कार्रवाई स्थल में तब्दील। असल में वहां पर हस्तक्षेप करने वाले कुत्ते, राहत कार्रवाई और सशस्त्र गुट को नाकाम करने की कार्रवाइयां चलाई गई। मॉरिशस एवं रीयूनियन टापू की ताकतों के बीच सहयोग के अंतर्गत एक सिमुलेशन कार्रवाई चलाई गई। सहा उनु गीता सुनारान।
5: Le personnel du GPM vont montrer un autre moyen d'insertion tactique connu comme méthode de rôle.
6: SMF और JPM की इन टीमों के लिए हर कदम अहम है। इन्हें हर समय किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक अभ्यास और प्रदर्शन के दौरान कई परिस्थितियों को दर्शाया गया। हथियारबंद लोगों से निपटना, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालना और बचाव अभियान चलाना, ऐसे कई अभ्यास किए गए। नशीले और प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित इन कुत्तों ने अपने अनुशासन और नियंत्रण का शानदार प्रदर्शन किया। संदिग्धों का पीछा करने और उन्हें काबू में करने में भी इनकी क्षमता देखने को मिली। ये सभी अभ्यास उन वास्तविक परिस्थितियों के करीब थे जिनका सामना इन विशेष इकाइयों को अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। इस प्रदर्शन के पीछे मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच प्रशिक्षण और अनुभवों का आदान प्रदान भी अहम है। ASP विशाल आनंद उग्नू कहते हैं,
7: Le docteur Jeban invité ici à l'SMF qui gagne l'occasion pour pouvoir faire un savoir-faire, que ce soit à la réunion.
6: SMF में कई इकाइयां हैं जिन्हें रीयूनियन और मॉरिशस में प्रशिक्षण दिया जाता है। फ्रांसीसी प्रशिक्षक भी मॉरिशस आते हैं। अब हमारे पास संपर्क हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। चाहे मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन, दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षण पाने वाले जवान स्थानीय संदर्भ में अपनी जानकारियां लागू कर सकते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए टीमों को तैयार करना और उनके बीच तालमेल को और मजबूत करना है। वास्तविक संकट के समय इन जवानों को सीखे गए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, तेजी से कार्रवाई करनी होगी, मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा।
4: आज कच्छ दिशे मापू में मॉरिशन पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 38वीं वार्षिक पर्यटन महासभा का आयोजन किया गया। अंतरिम राष्ट्रपति रॉबर्ट हंगले और पर्यटन मंत्री किशोर जीवाल भी मौजूद रहे। शीर्षक रहा मॉरिशन पर्यटन, मुलाकात, आदान प्रदान एवं मिशन। शिक्षण और मानव मूल्यों के माध्यम से शांति की नीति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं शांति दिवस के संदर्भ में महात्मा

0: गांधी संस्थान में एक सत्र लगाया गया, विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान हुआ। आस्था गोपिन चितामन की ये रिपोर्ट पेश है।
1: ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भारतीय चिंतन में शांति की कामना सदियों से व्यक्ति, समाज और पूरे विश्व के कल्याण से जुड़ी रही है। शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह और हर दिन। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान ने शिक्षाविदों और छात्रों को एक मंच पर लाया। भारतीय दर्शन में शांति का क्या अर्थ है? प्रोफेसर सत्यपाल सिंह के अनुसार शांति केवल संघर्ष का अभाव नहीं, ये व्यक्ति के भीतर के संतुलन से भी जुड़ी है।
2: व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक ही है, सुख से जीना, और यदि उसी में अशांति होगी तो फिर जीवन क्या है। आप परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और चलें तो राष्ट्रों के स्तर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो शांति का अभाव है, वो आपको कहीं जीना ही नहीं देता है। आप पूरे विश्व में देखते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई झगड़ा, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमेशा दिखाई देते हैं। इस झगड़े का मूल कारण है सामंजस्य का अभाव और मनुष्य की पूरी व्यवस्था में ग्रीड, लालच। जब हमारा ये शांत होगा, ये समाप्त होगा, तो हम शांति से रह पाएंगे। और वो तभी है जब लिव एंड लेट लिव की बात करेंगे, जब हम जियो और जीने दो की बात करेंगे, जब हम पूरे समाज को एक मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का जब भाव होगा, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसमें यही कहा है कि जीवन जो है वो एक व्यक्ति का नहीं है, समष्टि में जो जीवन मुझ में है वही आपके अंदर भी है, वही औरों के अंदर भी है, संसार के हर व्यक्ति में ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारों में सभी पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन सब आ जाते हैं।
1: वहीं डॉक्टर लीवा कॉपेन ने शांति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सामने रखा जो शिक्षा, नैतिक मूल्यों और हमारे कार्यों के जरिए लगातार आगे बढ़ती है।
3: Dans cette réflexion, nous aussi engage comment est-ce que tout un chacun, à différents niveaux de la société ou à différents niveaux de leur existence, peut aussi bénéficier de ce moment paisible, de cet environnement paisible, et comment est-ce que nous capables d'être chaque individu comme une mine riche en pierres précieuses et saisissent l'éducation qui peut capable vraiment faire livrer sa main trésor là.
0: अलग अलग दृष्टिकोण लेकिन संदेश एक, शांति केवल एक विचार न रहे बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और समाज का हिस्सा बने। मॉरिशस विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महानुभाव विनेश हुकुम सिंह का निधन। वे मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर थे और एक प्रसिद्ध भाषाविद भी। क्रियोल मॉरिशियन के हक में उन्होंने अहम कार्य किए हैं। वे मातृभाषा को काफ़ी अहमियत देते थे और कई वर्षों तक वे हमारी भाषाई विरासत की नींव रखने में बिता रहे थे। विदेशी समाचारों में अमेरिकी विमानी कंपनी फ्लाई दुबई ने इसराइल से और वहां की तरफ भरी जाने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगाई है। कल दुबई और तेल अविव के बीच प्रवेश के दौरान हुए झगड़े में तहकीकात की जा रही है। कंपनी ने ये उल्लेख किया है कि विमान के कॉकपिट में झगड़ा शुरू हुआ। रिपोर्ट नीतू शर्मा
4: हुई। दुबई उड़ान से जुड़ी घटना के बाद जांच जारी रहने तक इसराइल से आने जाने वाली इस एयरलाइन की उड़ानें निलंबित रहेंगी, कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया। कई यात्रियों के बयानों के अनुसार एक पायलट ने को पायलट द्वारा विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश का विरोध किया। इसके बाद कॉकपिट में हाथापाई शुरू हो गई। भारतीय पायलट जिसने को पायलट को ये गंभीर कदम उठाने से रोक दिया, वो घायल हो गया। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अनुसार उसे सऊदी शहर तबूक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की थी।
5: कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया,
4: इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक गंभीर सुरक्षा घटना बताया है।
6: The staffing pilot has been arrested. He is currently being interrogated by the Saudi authorities. We are maintaining continuous contact with the relevant authorities.
4: यात्रियों में अधिकांश इसराइली नागरिक थे और वे दुबई से यात्रा कर रहे थे। वे सभी सुरक्षित हैं। बाद में उन्होंने दूसरी उड़ान से यात्रा की जो इसराइल में उतरी। पत्रकारों से बात करते हुए

0: हुए यात्रियों ने बताया कि कॉकपिट में हिंसक झड़प हुई, विमान की ऊंचाई अचानक कम हुई और फिर संदिग्ध व्यक्ति पर काबू पाया गया।
1: रेनियन टापू में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नोट की गई है। कल से पेट्रोल का दाम 2 यूरो हो गया है और गैसोल 1.80 यूरो में बेचा जाने लगा है। मौसम संबंधी जानकारियां आस्था गोविंद तमन के साथ।
2: हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। आज रात को पूर्वानुमान है कि देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। कल दिन के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहाना रहेगा। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 6:07 पर, सूर्योदय 5:51 पर।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम कहेंगे अपनी तकनीकी सहयोगी लुडोविका और मार्टिन को भी। कुछ ही समय में शोक समाचार।

Railroad Île d'Ambre, Railroad Île d'Ambre, 68 साल के 68 years old के जनाब अली भाई रसमोली, जनाब अली भाई रसमोली का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात 8:30 बजे उनके मकान रॉयल रोड इल्तांपो से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदे पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे टुनाइट एट 8:30 PM। Chemin La Plaine Notre-Dame, Chemin La Plaine Notre-Dame, 82 साल के 82 years old के श्री लखिंदर दुर्गा, श्री लखिंदर दुर्गा जो सूर्य नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 10 बजे, कल सुबह 10 बजे उनके पत्नी श्रीमती देवंती दुर्गा के घर शिमेर लापलेन नोत्रदम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनी स्त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। गैबिलिन पाल्मा कैट्रोबोर्ड में, गैबिलिन पाल्मा कैट्रोबोर्ड में 84 साल के 84 years old की श्रीमती समुद्री फिराग, श्रीमती समुद्री फिराग पैदाशी नाम रामबरन जो सबिता नाम से भी जानी जाती थी और पहले रॉयल रोड वैद्या रहती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री रवि फिराग के घर गैबिलिन पाल्मा कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा कैट्रोबोर्ड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। सुकुलेन त्वाबुचिक में, सुकुलेन त्वाबुचिक में 48 साल के 48 years old के श्री अनिरुद्ध सिनाथ, श्री अनिरुद्ध सिनाथ जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके घर सुकुलेन थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन वेल थ्वाबुचिक के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 11 AM। रोथ्रॉयल ऑरियता में, रोथ्रॉयल ऑरियता में 72 साल के 72 years old की श्रीमती गीता दुखरन, श्रीमती गीता दुखरन जो गीता नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अश्विन दुखरन के घर रोथ्रॉयल ऑरियता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 11 AM। Route Royale 4 Sœurs, Route Royale 4 Sœurs, 73 साल की 73 years old की श्रीमती मौती भंगरूप, श्रीमती मौती भंगरूप जो सुखवंती नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री धीरज हरि के

घर ओतवाल कत्र से उसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुरशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:11 AM ओतवाल कांगारो में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी हराधन जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी, पैदाशी नाम बिराज की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री गिरीश हराधन के घर ओतवाल कांगारो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथ कोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:00 ओतवाल क्वायो में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री जय प्रकाश भगवत जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर ओतवाल क्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुरशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:02 PM वन सेल्स लो लेन ग्रांबेलिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री विलामुतु बालन जो सिनेवन नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री पुमालेन पालियान के घर वोनसक लो लेन ग्रांबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिवियरा क्रियोल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:02 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अपने घर में ला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6:30 बजे हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त शाम के 6:42 हो गई हैं और नई सोच कार्यक्रम एक ऐसा शो है जहां पर आप लोगों के होने का एहसास है। हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि हम आपका साथ देंगे यहां पर रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि 6:30 से लेकर के शाम के रात के 7 बजे तक हम लोग बात करेंगे नई सोच कार्यक्रम। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे रात के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। सो अभी के लिए एक नई सोच मैं लेकर के आया हूँ इस गाने के बाद।

रात बाकी है और बात भी बाकी है और ऐसे टाइम पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। इस थर्सडे की रात में बहुत सारे लोग अभी तक बिजी हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। काम से निकलने के बाद जब घर आते हैं, गर्म चाय की चुस्कियों लेने के बाद तब सोचते हैं कि क्या पकाना है। पकाते पकाते थक भी जाते हैं और आजकल थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होने लग गई है। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि आज सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे

उठ करके आपने बहुत सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद दिन भर आपने मेहनत की, फिर भी घर वापस आने के बाद भी आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है वो जारी है। यही तो जिंदगी है ना। अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रह करके, निठल्ले रह करके रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा

ज्यादा नहीं 30 मिनट्स 45 मिनट्स या फिर एक घंटे तक अगर आप जिम में थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद घर वापस आकर के अपने जितने सारे जो जिम्मेदारियां हैं अगर आप निभाएंगे सो वाई नॉट, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नई सोच में यही कहना चाहता हूं कि अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इन दोनों को अगर आप बकायदा लगातार उसको मेंटेन करेंगे ना तो मोटिवेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी।

0: au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: Stay connected with Abhi for your radio manoranjan. नई सोच कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अगला जो पड़ाव है हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम.
2: तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान. तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान.

0: बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे लूटने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

अभी के लिए मुझे बस ये पता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेडियो के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। नमस्कार और आदा वंस अगेन, वेलकम वेलकम जी फॉर योर दिनों की आवाज़ कार्यक्रम रात के 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। और हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। दिल की जो बातें हैं आप लोगों तक हम पहुँचाने वाले हैं, दिल की जो तार हैं उसको छेड़ने के लिए एकदम रेडी हैं। आप सब लोग ओल्ड फिट हैं, फिट एंड फाइन हैं, हम तो यहाँ पर एकदम रेडी हैं, बस आप लोगों के होने का एहसास है। 402-80-70-402-80-70 पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको हम यहां पर चलाने की कोशिश करेंगे। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बहुत ही एक रिसेंट खबर ये मिली थी कि एक दुबई से निकलने वाले एक जो प्लेन है वो इसराइल की तरफ जा रहे थे और उसको हाईजैक कर दिया गया था। एंड फाइनली वहाँ से जो पायलट है एक इंडियन है जिनका नाम स्मित मछार, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उस हाईजैक प्लेन को की लैंडिंग की और 172 से ज़्यादा जो यात्री हैं उन लोगों को सेफली बचा पाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत देश के इस वीर सपूत की जो बहादुरी है और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसको एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से नमन है, सलाम करते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट कप्तान स्मित मछार जी ने जिस साहस और जिस संकल्प के साथ दूसरों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभाला वो भारत के लिए, मॉरिशस के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और उनकी ये बहादुरी ने न सिर्फ केवल एक्चुअली सैकड़ों जिंदगियों को बचाया बल्कि एक

साथ ही बड़ी त्रासदी को टालने में भी उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। पूरे भारत, पूरी दुनिया को अपने इस वीर पर, इस जवान पर गर्व है। इस भारतीय पायलट ने चाकू से वार सहे, हार नहीं माना और एक ऐसी मतलब साजिश को टाली जिससे शायद हम लोग इसको लेकर के हम लोग अभी आंसू बहाते, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए हमें दाद देनी पड़ेगी और स्मित मछार को हम कहना चाहेंगे शाबाशी।

और अभी अभी मुझे प्यास लग रही है, गर्मी की शुरुआत महसूस हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी भी पी लो, अपने आप को हाइड्रेट करना शुरू करो, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तब बेहाल ही सिचुएशन होगा। जब मेरे को इस वक्त रात के 7:24 हो गई है, वेटिंग फॉर यू ऑन 5250-6200। बाय द वे, अगर आप मैसेज भेजे नहीं भेज पा रही हैं तो फ़ोन करने का आइडिया कैसा रहेगा ऑन 402-80-70 पर, 4028-0070 पर। और अगला जो गीत है स्पेशली हम नवनीत के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम दिल्ली बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। हैव अ गुड नवनीत।

चलिए ये गाना खासकर हम हंसिनी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो हमारे साथ एक हल्की सी मुस्कान के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि उसका दिन बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन अपने दोस्तों को भूलती नहीं है। हमेशा अपने दोस्तों की याद में, हमेशा दोस्तों की मदद में, हमेशा दोस्तों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती है। यू हैव ए ग्रेट हार्ट माय डियर, ए गोल्डन वॉइस विद ए गोल्डन हार्ट। दिस इज फॉर यू हंसिनी।

और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रीटा की सुंदेल। वो इस वक्त गरम गरम रोटी पका रही है। उन्होंने कहा घोपवा द मसाला है, साथ ही साथ है कुमरा यानी कि जोमो और हुगाई सोया, विदाउट फॉरगेटिंग कोको की चटनी, हाय हाय नारियल की चटनी, वो भी ओ माय गॉड हरी मिर्च, क्या बात है ये खाना एकदम। मैं आऊं आऊं।

रात बाकी है और बात भी बाकी है और आजकल आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि एक इंसान है जिनका नाम है स्मिथ मछार, आजकल काफ़ी चर्चे में है। दुबई से इजराइल ले जा रही फ्लाइट दुबई से पायलट कैप्टन स्मिथ मछार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 180 यात्रियों की जान बचाई। लेट मी इन्फॉर्म यू कि कैप्टन स्मिथ मछार मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और वो फ्लाइट दुबई में बतौर पायलट पिछले 4 साल से काम कर रही हैं। इससे पहले वो स्पाई जेट में 10 साल से ज़्यादा तक उन्होंने काम किया और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो भारतीय नागरिक हैं और साथ ही साथ गुजरात के रहने वाले हैं और इस दौरान ओमानी को पायलट से उन पर चाकू से हमला कर दिया था और उसने ओमान के सिस्टमों को भी ख़राब करने की भी कोशिश की। इस हमले में स्मिथ मछार बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपना हौसला अपना जुनून नहीं खोया। क्रू मेंबर्स और अन्य यात्रियों ने जब को पायलट को काबू कर लिया, तब उन्होंने घायल होने के बावजूद बड़ी सूझबूझ के साथ विमान को सऊदी अरब तक लैंडिंग करके हवाई अड्डे पर इमरजेंसी की लैंडिंग की। ये लैंडिंग बहुत ही बिल्कुल ही आसान नहीं था। यात्रियों ने बताया कि ओमानी को पायलट ने कैप्टन स्मिथ मछार को नीचे गिरा दिया था और उन पर चाकू से हमले करना शुरू कर दिया। सब जगह पर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कैप्टन स्मिथ मछार की आवाज़ तक भी नहीं निकल रही थी। जस्ट इमेजिन किस शिद्दत के साथ उन्होंने अपने आप को

काल्म रखा उस डिफिकल्ट सिचुएशन. जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स कि 14,000 फीट नीचे गिर गया. It was not that easy. जिसके बाद कैप्टन स्मिथ मछार ने विमान के कंट्रोल को संभाला और उसे सुरक्षित तक तबुक हवाई अड्डे पर उतार दिया उसकी लैंडिंग की. घायल पायलट और जितने सारे जो

आपको बताना चाहेंगे इस कैप्टन स्मिथ मछार साल 2022 से अमीराती सरकार के स्वामित्व वाली जो कम लागत वाली एयरलाइंस फ्लाई दुबई में काम कर रही हैं, उनके लिए पैसे इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इंसानियत है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम किसी की मदद करें तो उसके बदले में वी डोंट ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट यू हैव टू गेट समथिंग इन रिटर्न। बस आप लोग सेल्फलेसली काम करते जाइए, वी नेवर नो, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं लेकिन ऊपर वाले तो देख रहे हैं ना कि आपका काम कैसा है। तो चलिए ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जिन्हें जुबिन नौटियाल को बहुत पसंद है। ये गाना थोड़ा सा अलग है लेकिन जो लोग ड्राइव कर रही है खासकर आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ फॉर यू माई दोस्त। रात के 7:50 हो गई है, अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात के 9 बजे तक का।

So guys, waiting for you on 402-80-70 पर चार शून्य दो आठ शून्य सात शून्य पर. By the way, 5250-6200 में मैसेजेस भेजने का आइडिया कैसा रहेगा?

अच्छा उसके साथ एक झगड़ा हो गया आज, कल हुआ, इट्स ओके यार, इट्स ओके फाइन। अच्छा फोन करने के लिए आपके जो ईगो है वो सामने आ रहे हैं, अरे यार ईगो को साइड पे रखो, बस उनको कह देना झगड़ा तो हो जाता है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ या फिर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, उसको आपकी ही तुम नहीं कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लो ना। चलिए चलिए चलिए, बस एक मैसेज भेज दीजिए, मैसेज नहीं स्माइली, स्माइली ही भेज लीजिए, अब भेजो ना।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के 8:02 हो गए हैं।

वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ रात के 8:08 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और मैसेजेस धराधर मिलते जा रहे हैं। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मिला है। एक इंसान है जिनका नाम यहाँ पर नरेंद्र कहा गया है, नरेंद्र कुमार, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वैंकूवर कनाडा से, और कह रहे हैं कि किसी का दिल टूटा नहीं है अभी, बस ऐसे ही मैं आपके कार्यक्रम को सुन रहा हूँ। मैंने आपके लिए नहीं कहा है मेरे दोस्त, मैंने एक मैसेज पढ़ा था जिससे पता चलता है उसका दिल टूट गया है, दैट्स इट। और ऐसे 7 सॉन्ग मैंने यहाँ पर चलाया है। पता है कभी कभी ना सब लोगों की जो जो

फरमाइश है हम लोगों को पूरी करनी पड़ती है, यही तो हमारा काम है भाई। तो चलिए यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ वी डू हैव यजुर, और ये गाना खासकर यजुर के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे, उनके लवली मम्मी है केशिनी, वी ऑल्सो हैव उनके जो प्यारी बहन है जिन वे आजकल काफ़ी बिजी हैं अपने एग्जाम्स के लिए, वो को आज उनको कहना चाहेंगे याना। वी ऑल्सो हैव दिलान उनके बड़े भाई, साथ ही साथ वी हैव नील और निवेश, विदाउट फॉरगेटिंग प्रीतिश, प्रीतिश अभी थके हुए हैं क्योंकि पुर्तगाल से निकल करके वो पहुंच गए हैं मॉरिशस, उनका जो ट्रिप है काफ़ी इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल रहा। और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे उनके लवली मासी का नाम योगिता गुबिन और उनके प्यारे मामू जिनका नाम है रोशन। वी ऑल्सो हैव विनय गोबिन जो अभी अभी हमें सुन रहे हैं, अभी हम लोगों ने उन्हीं के गाने को की फरमाइश की है, हम लोगों ने पूरी की है टेकन फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल। और साथ ही साथ यतीश सानवी, वी ऑल्सो हैव गौरी और जितने सारे गोबिन फैमिली हैं उनके लिए अगला गीत यजुर ने मांग की है।

और चलिए ये गाना खासकर हम मिसिस दोसिया के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। दोस्ती का नाम जिंदगी है और जिंदगी का नाम भी दोस्ती है, और इसी को हम जिंदगानी कहते हैं। जब हम किसी के मदद करते हैं और इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते हैं, इसी को हम सेल्फलेस फ्रेंडशिप कहते हैं। थैंक यू सो मच मिसिस दोसिया।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

और इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा रेहाना हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है जो इस वक्त हम लोग आप लोगों के खिदमत पेश कर रहे हैं। मैडम एक्स मूवी से हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा ये गाना खासकर उनकी स्वीट जालीला के नाम डेडिकेट

आत्महत्या करना चाहती हैं जो दूसरे देश में हैं और उसको बहुत मिस कर रही हैं. वी ऑल्सो हैव जिहाद, दैट्स फ्रॉम रेहाना फ्रॉम फिनिक्स.

मूड काफी रोमांटिकली सेट हो गया है। पता है 90s era के जो गाने हैं अपने आप में एकदम उम्दा हैं, बढ़िया हैं। सुनने के बाद बहुत सारी यादें उमड़ती घुमड़ती सामने आ जाती हैं। क्या करें याद, जो 90s के जो गाने हैं ना, सुनने के बाद अहवे ही ऐसे ही हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और आप इसी तरह से आपकी जो फरमाइश है, आपकी जो फरमाइशें हैं, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे विकन सोमिनाडन के नाम, जिनका बर्थडे था। बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम ऑल द सोमिनाडन फैमिली, और हमेशा इसी तरह से वर्कआउट करते रहना जिम में। और ये गाना स्पेशली उनके सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त हमारे

और ये गाना खासकर हम ओनिशा श्रिपल के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे दिवाली के लिए। वो एक बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं और इसको लेकर के वो इस वक्त रिहर्सल में लगे हुए हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। दिस इज फॉर यू ओनिशा।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

थोड़ा सा डांस करने के मूड में हम लोग आ गए थे। होनिशा एक कथक डांसर हैं, तो उन्होंने कहा इस गाने की फरमाइश उन्होंने की, तो चलिए हम लोगों ने ये भी चला दिया। आज काफ़ी ब्लेंडेड फ्यूजन अलग अलग प्रकार के म्यूजिक सुनने का मौका मिला। लेकिन जाते जाते ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम हम ये गाना चला रहे हैं जिनके गाने मैं नहीं चला पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पता है 2 घंटे में कितना गाने में चलाऊँ, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जितना हो सके मैंने पूरी पूरी कोशिश की। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, लव यू एवरीवन।

रात के 9:04 हो गल बा सभी भाई बहन लोगन के संगतिया लोगन के हमार गट छोर प्रणाम स्वीकार कर जा तोहर अपन मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन आरएम फ्री और एएम टू रेडियो मॉरिशस पर तोहर स्वागत बाते भोजपुरी तरका के हम सफर लोगन बेझिझक मांग कर जा अपन खास भोजपुरी गीतवन के और नंबर वात वही है 402-4-5 उषा तुहर संगे रात के 11 बजे ले तो चले आज का पहल का गीत सुना जा बिस्वानी दीपवा के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:17 हो गल बा श्रोता लोग, अक्टूबर महीना के पहल का तिथि आज है और ई हा महीने के पहल का भोजपुरी तर का प्रोग्राम चला कलाकार लोगन के मान देवत हवा और लोग के गाना तोरा बेहद पसंद बातें कर खातिर बहुत धन्यवाद। चला अगला गीत विशाल जी खातिर और एकर धर्म पत्नी रीना खातिर और साथ ही साथ में सभी विशेष और परिवार खातिर जोन रहिला नुवेल फॉस और खासकर रोहित भाई खातिर जो हमने के सुनता बोबासन से।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: चलो श्रोता लोग भोजपुरी जगत में तो एक से एक गायक और संगीतकार है जेकर कारण हमनी के संस्कृति हमेशा जीवित रहिला पर तो लोग के बड़े सहयोग मिलेला हमनी के कि ई भाषा के और आगे बढ़ाई खातिर ऐसे ही अपन मेहरबानी दिखाया जा और यहाँ पर शांति जोन रही लाते रोज ई बखत हमनी के सुनता और जुड़ल बातें गाना सुनता बन जा और गाना मांगा तवन जा दागोचिया के मराठी परिवार खातिर और बगीना ओम खातिर जोन रहिला अप दागोचिया और खासकर भाई बलराम खातिर राजा बंधु के गावल गीत

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: समझी की हल्दी रहल दिमोस के शादी और लेंडी के चौतारी माचो के गावल गीत तचला छोटा लोग जिंदगी में संगीत स्पोर्ट्स और अच्छा सोच नहीं रही तो कैसे जीबा सबके कानों कोनों के कोनों हो भी बातें जो भी बा अच्छे से समय बिताया जा काहे कि ये दुनिया में तनाव कर कोनों कमी नहीं बा चला करा दूर तनाव भोजपुरी तड़का के प्रति बराबर लगाव और चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और गाना पृथ्वी खातिर जोन रहिला मेबग और गाना मांगा तवंजा पत्नी सुरेखा और बेटी आशी खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: चला श्रोता लोग ललिता जी खातिर जोन रही ला थियोले कर खातिर गाना चलावब जा और गाना मांगत अवन जा बहन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया सुखलाल मौसी और साथ में उषा लोखाना खातिर त चला कृषि के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:13 हो गल बा साथी लोगन आज है विश्व वृद्ध दिवस जाने ला थोड़ा जनरल नॉलेज पर ध्यान दे के हमने अपन के हमेशा अपडेटेड रखिला जा यह विशेष दिन पर हमने अपन बड़े जन के सम्मान में शुभ कार्य करीला सा बड़े जन लोगन के हाथ थाम के ही त आज हमने हैजा तक आईली सा सब वृद्ध जन के शत शत नमन त चला अगला गीत चलाओ अब जा सुननो यन के गावल गीत मीना खातिर जोन रहिला काठोबोन गाना मांगा तवन जा अपन खातिर अपन माँ देवी ना खातिर और भाई अक्षय खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:22 हो गल बा छोटा लोग भोजपुरी ऐसन एगो भाषा है जोन हमनी मिर्च मसाला डाल के बतिया लसा एकर मजावे कुछ और बातें ये भाषा के शब्दावली तब बरिये मजेदार है एगो बिरयानी खाइबा पर चटनी नहीं मिली तो बात नहीं बनेला वैसे ही बोले के अंदाज भोजपुरी में एकदम जरूरी है तो चल अगला गीत सुना नो यान के गावल गीत बाजा बोल ये गाना खासकर सुरेखा जी खातिर और एकर पति देव खातिर और जितना कोई की बखत काम कर रहा था और हमनी के साथ जुड़ल बा तो चला ये गाना तो लोग भी खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: ढगल ऐली

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:37 हो गल बा साथी लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है तनाव से तोरे नहीं बुझाए कब कैसन हम बीमारी धर लेलक है ना तनाव के दूर भगावा संगीत और खेल कूद में रुचि बढ़ावा जीवन में खुशी के रंग भर जाए तो चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और ये गाना अक्षय और रीना खातिर जोन रहीला बासा रोड का छबोन और साथ देवतावंजा और साथी साथ में सुदेवी जी जोन रहीला वाक्वा और गाना मांगतावंजा दीदी ललिता कुशल परिवार दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के स्नेहा कीर्ति रामरतन परिवार और हमारे तमाम सुनने वाले खातिर जोन जुरलबा
2: अरे बोल रहे हैं इसने सुगा सुगा
1: हमर भाई के साला

0: भोजपुरी तड़का
1: चला झूमा घुमा रेडियो मनोरंजन और ही रेडियो मॉरिशस संगे तो चले देखते देखते 11 बजे के बाद पूरा कार्यक्रम में तो हर सुंदर साथ रहल खातिर हृदय से धन्यवाद। अपन ख्याल रखिया जा और हरदम खुशी से जिंदगी के स्वागत करिया। नमस्ते और शुभ रात्रि।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार, मैं हूँ नीलमणि और म्यूजिक के साथ जुड़ने का वक्त हो गया है। कहते हैं ना, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, और जब रात खामोश हो तो एक खूबसूरत धुन दिल के बहुत करीब उतर जाती है। मोहब्बत का एहसास भी कुछ ऐसा ही है, कभी किसी की मुस्कुराहट में, कभी किसी की यादों में, और कभी एक गाने की धुन में। तो रात अभी जवां है, रात बाकी है, बात बाकी है, और मोहब्बत की कुछ सुनहरे पल भी बाकी है। और एक चीज़ है कि इस खूबसूरत दौर ऐसे याद आ रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना, कुदरत मूवी से। तो आशा करते हैं कि आप इन्जॉय करें।

का सफर कितना अजीब है ना, पल आते हैं, गुजरते हैं और फिर सिर्फ यादें रह जाती है। इसलिए कहते हैं जब तक सफर है प्यार से जिए, मोहब्बत से जिए और अपनों के साथ वक्त बिताएं। और अगर जिंदगी के सफर को किसी गाने में महसूस करना हो तो 80s का ये एवरग्रीन मेलोडी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना और डेडिकेट कर आपके लिए ही सुनहरे पल में।

कुछ पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी यादें जिंदगी भर साथ रहती है। कभी एक मुलाकात, कभी एक खत, कभी किसी की आवाज और कभी एक गाना। और जब बात हो उन पलों की जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं तो याद आता है ऐ जिंदगी गले लगा ले सदमा मूवी यानी 1983 में एक ऐसा गाना जो आज भी सुनते ही दिल को एक अलग सी वार्म्थ आ जाती है, दे देता है। तो चलिए इसी एहसास को फील करते हैं साथ में।

खूबसूरत 80s मेलोडीज के साथ ही और इस रात को एक खूबसूरत 80s मेलोडीज के साथ ही यादगार बनाते हैं नेक्स्ट यानी कि आखिरी गाना करते हैं जो दोस्त जो साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में और भी गोल्डन बनाते हैं इस फीलिंग को आपका प्यार यूं ही मिलता रहे आपका साथ यूं ही बना रहे शुभ रात्रि नमस्कार शबा खैर मैं हूं नीलमणि और ये था सुनहरा पल जहां गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं बल्कि महसूस किए जाते हैं

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस RM3 रेडियो।

0: BBC Radio, your music companion.
1: Oh ho ho ho ho ho ho! धन हो तेरे मेरे प्यार की।
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली।
2: कैसे कुंडली? काय के कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली, मिल गई रे मिल गई।